एफएम बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 17वीं तिथि। तदनुसार 8 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक

0: कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन की डीटीएच चैनल पर। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।

0: में प्रशंसा से नहीं सेवा से दर्शाया जाता है। जीवन प्रेम है और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। ये सभी पंक्तियाँ जीवन में हमने बहुत बार सबने सुनी है, लेकिन जीवन में इन्हें अपनाया कितनी बार है ये बहुत आवश्यक है। अच्छी बातें फूलों की खुशबू की तरह होती है, बहुत समय तक हमारे साथ साथ रहती है और यही चीज उनका जीवन में अनुसरण करने का कारण भी बनती है। हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। मनुष्य समाज में रहता है और हर दूसरे पल उसे किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में जब मनुष्य के मन में दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने वही मदद करने की भावना पैदा हो जाती है तो वो मनुष्य मानवता के सबसे बड़े स्तंभ पर खड़ा होता है। दूसरों की मदद का भाव हर धर्म में है। सभी के साथ दया भाव दिखाना और उनसे प्रेम करना धर्मों ने सिखाया है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल वही व्यक्ति कृतज्ञता से भर नहीं जाता बल्कि ईश्वर भी मदद का हाथ बढ़ाकर पहल करने वाले से प्रसन्न होता है। और ये एक कर्मी का फल है कि जब कभी आप मदद को पुकारते हैं तो कोई न कोई हाथ आपकी ओर भी अवश्य बढ़ता है। दूसरों की मदद हमेशा निस्वार्थ भाव से कीजिए और देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि देगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

एफएम 92.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 6:30 होने को है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतनी बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 10:00 व 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 पर व 11:00 समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:00 समय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या। 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 समय रहेगा फिल्म संगीत का

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेतीनी बात कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, देखो हवार हवार में समय है, आप सब भाई खेत में जावा निकलिया है। किसान भाइयों, आम तो देखो आप सब जान ही रहा हो कि ओणना वरना इंद्र देवता भगवान भी नाराज कुछ चली जा चुका है, जेनो मुख्य असर अपने फसल ऊपर दिखाई दे चुकू है। आप जान भी रहा हो कि ओण जो है ये पानी की कमी भी थोड़ी थे रही है। अपनी जो फसल है अवड़े तो पूरेपूरी तो नहीं कही सकता, पर अवड़े भी किसान भाई अपनी आशा लगाड़ी बैठा था कहें कि अवड़े भी पानी आ जाएगा तो अपनी फसलें जो हैं ये अच्छी थी सके। किसान भाइयों, अवड़े के फसल ऊपर फंगस रोग ने एने थकी जो पीलापन आई रू पत्ती ऊपर सोयाबीन की फसल है ई भी एने थकी जूझी रही थकी है। किसान भाइयों, अवड़े तो बारिश की कमी थकी एम कही शको कि खरीफ फसलों पर संकट ना बादल भी गहराई जा सकता है। महंगा बीज, खाद, मजदूरी ऊपर खर्च करवा बाद भी खेतर में फसल भी हुकावाना कगार ऊपर है। ने आप जानी जाओ कि सोयाबीन में भी हवे फंगस की समस्या भी वधी रही चुकी है, ने दवाइयों ना छिड़काव ने बावजूद भी पत्ता भी पीरा पड़ी जा गई जा सका है। किसान भाई भी अब चिंता में है कि जल्दी बारिश न थी तो फसल खराबा थकी घणो मोटो नुकसान होगा। बारिश की कमी नो असर सोयाबीन, उड़द, तिल ने धान सहित जैसे भी खरीफ फसलें हैं एड़ा ऊपर दिखाई दे चुको है। खेतर में किसान भाइयों, नमी ने कमी ने कारण आज फसल की बर्बाद भी प्रभावित हो रही थी। किसान भाइयों, अभी भी अच्छी बारिश ना इंतजार में किसान भाई लग्या था कारण। देखो किसान भाइयों, आपने कही सको कि खेती ने हाथे हाथे आपो जो स्वास्थ्य है ये भी आपने आना समय में हंबरव पड़ेगा, क्योंकि अपने आना समय में एक तो खेती की मार भी है, हाथे हाथे मौसमी बीमारी भी खूब फैली रही थकी है। चार यदि आप हंबरवा में आई रू ताव, सर्दी, जुकाम, खांसी, दस्त आभी तरह तरह की बीमारी भी हमरी रही थकी है, तो किसान भाइयों पहली बात तो आपने बचा भी उपचार है, आने चीजें थकी आपने बचे भी हो। हवा पीवा में ध्यान रखू है, पानी पीवा में ध्यान रखू है। तो बीजी बात ही कि किसान भाइयों, देखो अगर आवा कोई भी प्रकार का लक्षण आपने देखा है, चाहे माथो सड़ गयो, बुखार आ गयो है, या फिर हल्की हल्की ठंड नो असर भी लगी जो सको है, तो तुरंत आपने प्राथमिक उपचार जरूर करावे। गिरेस्त दवाई लावी ने खाई ना के डॉक्टर की जांच, सलाह, परामर्श जरूरी है। डॉक्टर ने बताड़ी ने पसर आपने दवाइयों नो उपयोग करवो है तो आपने आनी बात में भी विशेष कर ध्यान रखू है। किसान भाइयों, सार पूरो लेवा जाइ रहा हूं ने जंगल में खेतर में अपने सारोड़ो भी खूब थी पड़ू है, तो सारोड़ा ने हाथे हाथे अपने सावधानी भी रखनी जरूरी है। जंगली जो जीव जानवर हैं, जहरीले जीव जानवर हैं, ये भी बांधने आ पड़े हैं, तो अपने सार पूरो लेती बेरा बांटती बेरा अपने आ भी ध्यान रखू है, नहीं तो घना वक्त अपना

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना चुन्नीदास सोसाथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी, और कहानीकार हैं मृदुल पुरोहित।

कहानी गुरु दक्षिणा। स्कूल में मोहन सर से सारे बच्चे डरते थे। बच्चे ही क्या, कई बार उनके साथी भी किसी संवेदनशील मुद्दे पर बात करने से हिचकते थे। मोहन सर का गुस्सा कब सातवें आसमान पर पहुंच जाए कोई ठिकाना नहीं था। स्कूल के हेडमास्टर ने भी कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सेल स्वभाव के मोहन सर सिर हिलाकर हूं हां कर रह जाते। यह मोहन सर का ही खौफ था कि उनके कालांश की घंटी बजने और उनके आने से पहले कक्षा में सन्नाटा फैल जाता। कोई अपनी जगह से नहीं हिलता, हर कोई चुप्पी साध लेता, किसी की मजाल नहीं कि चूं चा कर ले। इसी स्कूल में अरविंद ने भी प्रवेश लिया। उसे मोहन सर के स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन जैसे ही मोहन सर ने कक्षा में प्रवेश किया, उन्होंने अरविंद को एक टेबल पर खड़े होकर उधम मचाते देख लिया। बस फिर क्या था, वे अरविंद पर पिल पड़े। अपने हाथों में थामी बेज से अरविंद के हाथ लाल कर दिए। उसकी आंखों से धार धार आंसू टपकते जा रहे थे, लेकिन मोहन सर थे कि उनका हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान नजरे बचाकर एक बच्चा हेडमास्टर के पास पहुंचा और सारी कहानी एक सांस में जाकर बता दी। तुरंत फुरत में हेडमास्टर तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने मोहन सर को फटकारते हुए अरविंद को चुप कराया। इसके बाद तो दिन भर मानो कक्षा के बच्चों के होठों को किसी ने सिल दिया हो, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अरविंद का तो मानो बुरा हाल था, लेकिन डर से कोई कुछ नहीं बोला, उसके पास तक नहीं फटका। आखिर फटकता भी कैसे, कोई मोहन सर के गुस्से का कोप भजन नहीं होना चाहता था। अरविंद शहर की कच्ची बस्ती में रहने वाली विधवा मां का बेटा, 8 साल की उम्र में उसके पिता के सिर से साया उड़ गया था। मां ने मजदूरी और घरों में बर्तन मांजकर उसे बड़ा किया और इस आस में सरकारी स्कूल में भर्ती कराया कि पढ़ लिख कर वह उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मां की दिनचर्या को अरविंद भली भांति जानता था। भोर से पहले ही मां उठकर घर के कामकाज निपटाती और दिन भर काम के बाद थकान से चूर होकर सो जाती। वह भी कभी मां को परेशान नहीं करता, लेकिन स्कूल में पड़ी मार आज वह भूल नहीं पाया। छुट्टी के बाद बार बार वह अपने हाथों को देखते हुए घर पहुंचा। शाम को मां को देखते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। मां ने पूछा तो सहमते हुए सब कुछ बता दिया। मां ने उसे समझा बुझाकर और अनिच्छा के बावजूद उसे थोड़ा बोड़ा खिलाकर सुला दिया। समय बीता, अपनी मां की मेहनत को अरविंद ने जाया नहीं होने दिया। वह 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी। छात्रवृत्ति की राशि ने आर्थिक विषमताओं के बीच अरविंद को समय की रफ्तार के साथ चलने का संबल दिया। अरविंद ने भी परिश्रम में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसके परिश्रम को देख विज्ञान के शिक्षक शर्मा जी काफी प्रभावित हुए। एक दिन पूछते पाछते वे उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर खटका हुआ तो अरविंद ने ही खोला। सामने शर्मा जी को देख वह एक बार अचंभित रह गया, किंतु तुरंत संभल कर बोला, सर आप आइए आइए। वह तुरंत खपरेल से ढके मकान के दूसरे हिस्से में गया और चंद पलों में पानी से भरा गिलास लेकर लौटा, सर पानी पीजिए। कहते हैं कि अभावों में जीने वाले आवभगत में कभी पीछे नहीं रहते। ऐसा ही दृश्य देख शर्मा जी मुस्कुरा दिए। घर परिवार और दिनचर्या के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा के बाद उसने अरविंद से पढ़ाई के बारे में बातचीत शुरू की। वे अरविंद की प्रतिभा से पहले ही परिचित थे। वे जिस उद्देश्य से आए थे उसके बारे में टटोलते हुए अरविंद से पूछा, तुम आगे चलकर क्या बनोगे अरविंद, कुछ सोचा भी है या नहीं? वह कुछ सोचता विचार था उससे पहले ही शर्मा जी ने उसे एक प्रवेश परीक्षा देने की सलाह दी और अपने पूरे सहयोग को आश्वस्त किया। इस सुझाव को अरविंद के मनोमस्तिष्क ने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया। घर की पतली हालत, पढ़ाई कर सकने लायक मिलने वाली छात्रवृत्ति, ऐसे में प्रवेश परीक्षा के लिए बड़ी फीस कैसे पूरा कर पाएगा वह? उसके माथे की सिलवटों को देखकर शर्मा जी ने कहा, तुम होशियार बच्चे हो।

ये कच्ची बस्ती तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम फीस किताबों की चिंता छोड़ दो, वह सब मैं कर लूंगा। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और हाँ, अपनी माँ को जरूर बता देना। यह कहकर शर्मा जी चल दिए। दिन भर की मेहनत के बाद थकी हारी माँ शाम को घर लौटी। चूल्हे पर रोटियां सेकती माँ को झिझकते हुए शर्मा जी की बात बताई। माँ भी सोच में पड़ गई। रोटी के जलने की गंध उसके नथुनों में घुसी तो तंद्रा टूटी। उसने झट से रोटी को तवे से हटाया और अरविंद की ओर देखते हुए बोली, तू क्या चाहता है? जो तुझे अच्छा लगे वो कर। हाँ, किसी परीक्षा के चक्कर में रुपये बर्बाद मत कर देना। माँ की सलाह भरी स्वीकृति की बात सुन उसने सिर हिलाते हुए मान ली। अरविंद ने प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी तन्मयता से परीक्षा दी। 2-2.5 माह बाद एक दिन शर्मा जी उसके घर पहुंचे। चेहरे पर झलक रही खुशी के बीच उन्होंने अरविंद को परीक्षा में सफलता की बधाई देते हुए गले लगा दिया। कुछ देर में माँ भी आ गई। बेटे के परिश्रम को सार्थक होते देख उसकी आंखें छलक उठी। अरविंद ने शर्मा जी से चर्चा की। इसी दौरान शर्मा जी ने उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली और उसे राजी कर लिया पढ़ाई के लिए बड़े शहर में भेजने के लिए। समय अपनी गति से चलता रहा। मोहन सर 60 साल की आयु पूरी कर राजकीय सेवा से निवृत्त हो गए। उन्होंने भी बड़े शहर में मकान ले लिया और पत्नी के साथ वहीं रहने लगे। उनके 2 बेटियां थी, उनके हाथ कुछ साल पहले ही पीले कर दिए थे। एक दिन अचानक उनकी पत्नी बेहोश हो गई। वह जैसे तैसे अपने पड़ोसियों के सहयोग से सरकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में पता चला कि सरकार से अपनी मांगों को लेकर सभी डॉक्टर सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं, किसी ने भी अपनी ड्यूटी नहीं दी। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते पूरे अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति थी। ऐसे में पत्नी की बिगड़ी हालत देखने वाला कोई नहीं था। मौजूद एक व्यक्ति ने राय दी कि यहाँ किसी डॉक्टर के आने के हालात दिखाई नहीं पड़ रहे, किसी निजी अस्पताल में ले जाओ। कुछ सोच विचार कर मोहन सर ने हामी भरी और पत्नी को लेकर शहर के एक निजी चिकित्सालय पहुंचे। नया अस्पताल, वे यहां पहली बार आए थे, न किसी से पहचान। वे रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे और पत्नी की हालत बताने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, पेशेंट को रूम नंबर 8 में ले जाओ। अस्पताल के कर्मचारियों ने मोहन सर की पत्नी को स्ट्रेचर पर लिटाया और कमरा नंबर 8 तक पहुंचा दिया। उन्होंने धीरे से खटकाया, कम इन सुनकर मोहन सर ने दरवाजा खोला। अंदर जाते ही वे डॉक्टर के चेहरे को देखते ही रह गए। वह अरविंद था। चंद ही पलों में आंखों के सामने कक्षा का पूरा घटनाक्रम घूम गया। वह कुछ बोलते इससे पहले ही अरविंद उठा और कमरे से बाहर आया। उसने मोहन सर की पत्नी की जांच और तबियत की पूरी जानकारी लेने के बाद एक इंजेक्शन दिया, अस्पताल के कर्मचारी से ही कुछ दवाइयां मंगाई और मोहन सर की पत्नी को पिला दी। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद मोहन सर की पत्नी के शरीर में कुछ हरकत हुई। उनकी पलकें, हाथ पैरों की उंगलियां हिलने डुलने लगी। उन्हें धीरे धीरे होश आ रहा था। पत्नी की हालत सुधरती देख मोहन सर के चेहरे पर भी संतोष के भाव नजर आने लगे। कुछ देर बाद उनकी पत्नी सामान्य हुई। अरविंद ने कुछ टेस्ट कराने को कहा और दवाइयां लिखकर उन्हें समय पर लेने की हिदायत दी। तो मोहन सर ने शक पकाते हुए अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और बटुए से रुपए निकालते हुए बोले, यह लो फीस। अरविंद अपनी कुर्सी से उठा और मोहन सर के पैर छूते हुए बोला, सर कैसी फीस? आपके कारण ही मैं आज आपके कुछ काम आ सका। पढ़ाई के प्रति आपसे मुझे प्रेरणा मिली, शर्मा सर ने मुझे संबल दिया। यह कहते हुए अरविंद अपनी आंखें पोंछता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी कहानी और कहानीकार थे मृदुल पुरोहित। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सविता सिंह का नमस्कार। आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए इस गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: ये रात फिर न आएगी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। एसएच बिहारी की बोल थे ओपी नैयर की तर्स। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

आशा भोसले के आवाज की इस खूबसूरती को कौन नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ एक तरह के गाने नहीं गाए, उनकी आवाज में शरारत, शोखी, रोमांस, दर्द, मस्ती और नजाकत की एक अनोखी अदा है। आज उनके जन्मतिथि पर उन्हें सादर नमन। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था, और अगला गाना आपको अब सुनवा रहे हैं।

आपको फिर से बता दें, वक्त फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें थी, शाही लुधियानवी के बोल थे और रवि का संगीत था। ये गीत जो आप सुन रहे हैं इसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं।

0: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। यादों की बारात फिल्म का ये गीत आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। और इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने

0: 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटन ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटन ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय

0: व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में

0: अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढाई इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

पंख नहीं किताबें उड़ान देती हैं, साक्षरता ही पहचान देती है। गिरकर उठना किताबें सिखाती हैं, अंधेरे में भी राह दिखाती हैं। सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। श्रोताओं, यूनेस्को ने 1966 में इसकी शुरुआत की थी ताकि दुनिया में शिक्षा का उजाला फैल सके।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, साक्षरता का मतलब सिर्फ ABCD या अपना नाम लिखना नहीं है। साक्षरता का मतलब है अंधेरे से उजाले की ओर जाना।

है अंधेरे से उजाले की ओर जाना। एक अनपढ़ व्यक्ति अपनी आंखों से देखकर भी अंधा होता है, क्योंकि वो बोर्ड नहीं पढ़ सकता, कागज नहीं समझ सकता। और एक साक्षर व्यक्ति गरीब होकर भी अमीर होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आत्मनिर्भरता की चाबी है साक्षरता। जो पढ़ लिख सकता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, अपना बैंक का फॉर्म खुद भर सकता है, अपने अधिकार खुद समझ सकता है। अनपढ़ को हर जगह दूसरे की मदद लेनी पड़ती है।

श्रोताओं, अंधविश्वास से मुक्ति साक्षरता है। शिक्षा इंसान को सोचने की ताकत देती है, क्या सही है क्या गलत ये साक्षर व्यक्ति ही समझ सकता है। श्रोताओं, देश की तरक्की भी साक्षरता से है। जिस देश में साक्षरता ज्यादा, वो देश ज्यादा तरक्की करता है। जापान, अमेरिका, इनकी तरक्की का राज उनकी 100% साक्षरता ही है।

श्रोताओं, आज भी भारत में कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, खासकर गांव में लड़कियां। हमें समझना होगा, एक लड़की को पढ़ाओगे तो दो परिवार पढ़ेंगे। श्रोताओं, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए हैं, पर असली अभियान तो हमें अपने घर से शुरू करना होगा। अपने घर के नौकर, ड्राइवर या गांव के किसी बच्चे को पढ़ाना ही सच्ची साक्षरता है।

श्रोताओं, किताबें सिर्फ कागज नहीं, किस्मत बदलने का हथियार है। इसीलिए कलम उठाओ, किताब पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। अनपढ़ रहना अभिशाप है और साक्षर होना वरदान है। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम संपन्न करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत नेहा काले के स्वर में।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत नेहा काले के स्वर में। प्रातः की 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 168 निकायों में वोटिंग के लिए आज मतदान दलों की रवानगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर। वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जैन धर्म के पर्युषण पर्व आज से शुरू। मंदिरों में तप, उपवास, ध्यान और साधना के कार्यक्रम। और राज्य में मॉनसूनी बारिश का मौजूदा दौर कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने 12 सितंबर से बारिश के फिर जोर पकड़ने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव

0: के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में अलवर, भीलवाड़ा, पाली और भरतपुर नगर निगम सहित 168 निकायों में मतदान होगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए आज मतदान दलों की रवानगी होगी। सुरक्षा के बीच अंतिम प्रशिक्षण और चुनाव सामग्री वितरण के साथ मतदान दल संबंधित केंद्रों पर शाम तक पहुंच जाएंगे। कल होने वाले मतदान में 57.5 लाख से अधिक मतदाता 20,600 से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए वोटर आईडी सहित 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे। इस बार बीएलओ घर घर जाकर मतदान पर्ची नहीं बांटेंगे। मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में स्वयं जांचना होगा। राजधानी जयपुर में भवानी निकेतन परिसर से 2 पारियों में मतदान दल रवाना होंगे। जिले में 2 नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं के 565 बूथों पर पार्षदों के चुनाव के लिए पहले चरण में वोटिंग होगी। जयपुर नगर निगम में 11 सितंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सरहदी जिले बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कल होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं में जोश और उत्साह का माहौल है।
1: सरहदी जिले बाड़मेर में कल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में 68 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 32 को संवेदनशील और 20 को अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। इस बीच कल शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रही है। अपनी सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। जसवंत सिंह डोडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: दूसरी ओर दूसरे चरण के 11 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार की सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गौरतलब है कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जागरूकता रैली, स्लोगन, पोस्टर प्रतियोगिता के साथ ही नवाचारों के जरिए लोगों को मतदान का कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग भी महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार गतिविधियां आयोजित कर रहा है। हनुमानगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान से संबंधित प्रेरक संदेश की मेहंदी लगाकर जागरूकता संदेश दिया गया। मेरा वोट मेरा अधिकार और पहले मतदान फिर अन्य काम के संदेश के साथ महिलाओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जैन धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक पर्व पर्युषण आज से शुरू हुआ। 8 दिन तक चलने वाले पर्युषण पर्व में जैन समाज के लोग मंदिरों में तप, उपवास ध्यान और साधना करेंगे। हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि जिले के रणकपुर स्थित प्रसिद्ध जैन

0: में भगवान का आंगी श्रृंगार किया जा रहा है।
1: जैन धर्मावलंबियों का आध्यात्मिक पर्यूषण पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। जैन मंदिरों को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाया गया है। गोरखपुर से विभिन्न जैन मंदिरों में भगवान का विशेष आंगी श्रृंगार किया जा रहा है। 8 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में श्वेतांबर समुदाय के श्रद्धालु तप, उपवास, स्वाध्याय, प्रत्यक्षमण, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि का संकल्प ले रहे हैं। पर्व का समापन 15 सितंबर को सुनसरी पर परस्पर क्षमा याचना और मच्छा में दुगड़म के साथ होगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: सवाई माधोपुर में भी जैन धर्मावलंबी पर्युषण पर्व के चलते आध्यात्मिक और आत्मिक शांति के लिए कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। भरतपुर के बंद बारेठा अब अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के चलते भी पहचान बनाने लगा है। क्षेत्र में प्रस्तावित बटरफ्लाई पार्क के प्रारंभिक सर्वेक्षण में 27 प्रजातियों की तितलियां दर्ज की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि तितलियों की विभिन्न प्रजातियों की मौजूदगी क्षेत्र में जैव विविधता का बेहतर उदाहरण है।
2: तितलियां केवल विचरण करती हुई नहीं मिली बल्कि अंडे देने और प्रजनन की गतिविधियां भी इनमें देखी गई, जिससे संकेत मिले इनकी बंद बारेठा का क्षेत्र तितलियों के लिए अनुकूल प्राकृतिक आवास है और यहां बटरफ्लाई पार्क की मजबूत संभावनाएं हैं। सर्वे में केसिया ऑक्सीडेंटेलिस, केसिया टोरा, केसिया सियामिना, जिडिफस केप्रिस सिड़ा, रोमबी फोलियो, साल्वाडोरा जैसे प्रमुख होस्ट पौधों की भी पहचान हुई है। इन्हीं प्राकृतिक आधारों को मजबूत करते हुए पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। शिवकुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी बारिश का मौजूदा दौर अब कमजोर पड़ गया है। बीते 24 घंटों में अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा, हालांकि कई जगह बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। सवाईमाधोपुर धौलपुर में बारिश थमने से भराव क्षेत्र में पानी उतरने लगा है, लेकिन चंबल नदी क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियों के फिर से जोर पकड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक मानसून की परिस्थितियां कमजोर रहने के आसार जताए हैं। हालांकि भरतपुर और कोटा संभाग के छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा 15 से 25 सितंबर तक सहायक आचार्य चिकित्सा भर्ती और चिकित्सा विभाग में अन्य भर्तियों के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक, भौतिकी और गणित विषयों में शिक्षकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 168 निकायों में वोटिंग के लिए आज मतदान दलों की रवानगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर, वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जैन धर्म के पर्युषण पर्व आज से शुरू, मंदिरों में तप, उपवास, ध्यान और साधना के कार्यक्रम। और राज्य में मानसूनी बारिश का मौजूदा दौर कमजोर पड़ा, मौसम विभाग ने 12 सितंबर से बारिश के फिर जोर पकड़ने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे मिश्रित स्वरों में गजलें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं मिश्रित स्वरों में

0: गजलें।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं।

0: ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ,
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना मिश्रित स्वरों में गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, नूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषय

प्रतिक्रियाओं और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियाँ, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ एनसीईआरटी की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओ, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओ, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने

0: माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा दो की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई छुपन छुपाई बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा
2: आएगा। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
3: लेकिन डाइन कौन देगा?
4: जी हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
3: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
4: एक दो तीन सब छुप गए ना। 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
2: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
5: मोहित, अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
2: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
4: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
2: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
4: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
5: धप्पा!
4: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
2: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
4: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
6: नहीं मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
5: अंदर छुपा।
4: मारिया
5: धप्पा!
4: अरे नहीं।
2: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
7: दादी दादी दादी हिलना मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
4: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
5: सिमरन धप्पा!
7: एक मिनट, फिर पकड़ लिया।
4: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
2: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया, कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा,
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
0: जीत धप्पा। अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।

0: दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
1: एक, दो, तीन।
2: छुपन छुपाई। है ना मजेदार खेल। तो बच्चों, अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
4: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापकगण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
5: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूँ।
6: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
7: नमस्कार।
5: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
7: जी, जी।
5: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
7: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है।
8: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।

0: मीना
1: जी,
0: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
1: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
0: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
1: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती। मेरे एक पैर में तकलीफ है।
2: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
3: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
2: अच्छा।
3: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
4: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
2: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
4: अच्छा।
2: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
1: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
2: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
1: जी,
2: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
3: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
2: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
4: जी।
2: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
3: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
2: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
4: जी। नीलम जी, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
5: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हीलचेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
2: अच्छा, एक बात बताओ
5: जी,
2: सरिता व्हीलचेयर का प्रयोग कब से करती है?
5: इसकी माँ ने बताया था कि व्हीलचेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
2: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
1: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
5: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
2: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
5: जी,
2: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं।
5: जी।
2: पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
5: अच्छा।
2: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
5: ऐसा विकार होता क्यों है?
2: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
5: अच्छा।

0: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
1: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
2: जी मैडम।
1: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दे।
2: जी।
1: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
2: जी।
1: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
2: जी ठीक है।
3: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
4: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
5: नमस्ते।
3: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
1: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
5: मैं सातवीं में पढ़ती हूँ।
1: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
4: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
1: अच्छा।
4: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
1: डॉक्टर पुष्पा,
4: सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
5: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
1: अच्छा।
5: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
5: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
4: जी।
5: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
1: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
4: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
5: हाँ, संभव तो आता है पर लिख नहीं सकते।
4: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
1: अच्छा।
4: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते। रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
5: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा।
5: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
4: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है। क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
4: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
3: जी। आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
4: जी।
3: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
4: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
1: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
3: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
1: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
1: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
2: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
4: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: FM बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी

0: हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन, आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है?
1: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन। जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है, वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी जरूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है, तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी जरूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको जरूरी है, आपको आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको जरूरी है, और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है।
0: तो ये बताइए कि कैसे समझें, ये जो जरूरत होती है एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कितनी डाइट की जरूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खासतौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो?
1: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
0: ऊर्जा भी देगा,
1: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपके थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
0: वो भी मौसम के हिसाब से,
1: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है, और हम आजकल ज्यादाकर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध पनीर इसमें से आ जाता है, और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी फिश चिकन इसमें से आपको मिल जाता है, और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है।
0: जी, और ये जो आपने बताई सब्जी, तो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक

0: गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ,
1: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
0: ज्वारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
2: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत जरूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज्य रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा ओके।
1: आप ज्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटी छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल पल्सेस जैसे राजमा छोले पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था आपके बुजुर्ग

0: और घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है, इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
1: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
0: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं, वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं
1: जी।
0: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल, जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
1: पत्ती
0: वो
1: वाली सब्जी,
0: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
1: अच्छा,
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पर खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीजें अलग अलग है
1: जी, जी।
0: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं
1: जी।
0: नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए, जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गया। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है, वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है उसके बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्व

0: महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
1: जी जी।
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है। जो मौसम की जो सब्जियां है, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी। उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गांव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं।
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइज

ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे डाइटिशियंस में भी होता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए, वहां पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें, जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार। इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है, ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपकी सही

0: पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपकी सही विटामिंस मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले तीन चार महीने में आपको नौशिया, थोड़ा सा उल्टी होना, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के तीन ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहां पे एक चौथाई धान है, एक चौथाई प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही, दूध, सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं, जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
1: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
0: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
1: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
0: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है, मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है, प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो उसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज

0: एज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई चक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाते हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को आईबीएस आईबीडी ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है
0: जी।
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करे।

0: गा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
1: जी,
0: है,
1: ब्लोटिंग होने लगती
0: बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है। तो आपकी शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप तीन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये तीन चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
1: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है आईबीएस, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, आईबीएस, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाए और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: आईबीएस और आईबीडी थोड़ा एडवांस लेवल की पेट की इश्यूज हैं, जहां पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है, आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहां यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहां पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितनी विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही

0: उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई मुझे हर दिन का एक फल चाहिए और ये मैंने किया हुआ है, कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी।
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसकी वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है।

0: जाते हैं
1: वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं? मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए। पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग हैं, कितने तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
0: जी बिल्कुल।
1: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है। तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी जी।
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गर्म मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल के,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते।
0: जी,
1: आप
0: जी।
1: उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, और लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है।
0: जी, जी।
1: कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
0: जी जी।
1: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
0: जी बिल्कुल।
1: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहां बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहां हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना जरूरी है, बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए या

0: कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने।
0: जी,
1: कौन सा
0: आप ही बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहां से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूं तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू

0: के बहुत घंटे खुला रहता है, अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो
1: ओहो
0: वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से,
1: जी
0: तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही
1: ओहो
0: नहीं रहे हो।
1: जी
0: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा, नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला ले लो,
1: अमरूद
0: अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे
1: आंवला
0: आंवला एक चीज है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया, तो
1: करौंदा
0: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर
1: जी
0: सकते हो।
1: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किस में होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
1: जी। एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
0: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
1: ज्यादा
0: थाली में ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की जरूरत है।
1: जी,
0: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन, WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच।

0: हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के तो आराम से,
1: दाल में भी बिल्कुल।
0: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
1: जी, बिल्कुल। अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

कार्यक्रम बैंड 37.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पांचवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजने को है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में कुछ गजलें।

0: सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में कुछ गजलें।

0: इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मैं ही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में कुछ गजलें। दिन के 11:30 होने को है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं फिल्म गुरु से। ए आर रहमान और चन्ने की आवाज में गीत, बोल हैं गुलजार के और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली पेशकश। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से। इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ ने और संगीतकार हैं विक्की प्रसाद।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं परिमिता फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गीत। बोल हैं स्वानंद किरकिरे के और संगीतकार हैं शांतनु मोहित्रा।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं आइए सुनते हैं पीके फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में गीत, बोल हैं अमिताभ वर्मा के और संगीतकार हैं शंतनु मोहित्रा।

श्रोताओं नीचे सुनते हैं दे दनादन फिल्म से मीका सिंह की आवाज में गीत और जिसको लिखा है सैयद कादरी ने और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश बार बार देखो फिल्म से जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में। संगीतकार हैं जसलीन रॉयल और आदित्य शर्मा।

0: एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: भुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने

0: पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए सुनते हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कंचन, मनोहर उदास और आनंद की आवाजों में ये गीत कुर्बानी फिल्म से अभी आपने सुना। इंदिवर ने इसे संगीत दिया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडिले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

यादों की बारात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।

बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। आज जाने माने पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिवस है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन।

0: आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा एआर रहमान की तर्ज।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना।

0: गाना जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: बाजीगर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में। रानी मलिक ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: दोस्ताना फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल संपन्न होता है।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से मिलती जुलती है और कितनी मिलती है, और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत हम इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं पहले से ही, लेकिन शुरुआत करने से पहले इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इबारत नहीं पढ़ी है। इबारत कुछ इस प्रकार थी। शाम की हल्की हवा में उसकी चुनरिया सरक रही थी। वो रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रही थी और वो दूर से उसे चुपचाप देख रहा था। एक दिन उनकी नजरें मिली, वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। बस वहीं से एक खामोश रिश्ता शुरू हो गया। उसके चेहरे में वो जादू था कि उसे देखते ही दिल बेखुद हो जाता। उसकी आंखों में उसने सपने भी सजा लिए थे। एक दिन बारिश में उसने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर खींच ली। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी तस्वीर इतनी क्यों खींचते हो? वो बोला, तुमसे मिलकर न जाने क्यों तुम्हें तस्वीर में कैद करने का मन करता है। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, ऐसा कभी हुआ नहीं। वो मुस्कुराया, ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद अब कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुमसे पहले किसी ने मेरे दिल को इस तरह छुआ ही नहीं। जीते तो है सभी, मगर जिंदगी वही है जो किसी के साथ जीने का ख्वाब दे जाए। और उस शाम बेखुदी में उठे कदम एक ही राह पर आगे बढ़ते चले गए। जी हाँ, तो इबारत हमने पढ़ दी है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और आप अपने संदेश हमें भेजिए, साथ ही गीतों की लिस्ट भी भेजिए और हमारी बातें भी होती रहेंगी। फिलहाल शुरुआत इस गीत के साथ।

सिलसिला फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में, और शिव हरी का संगीत था। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं जो पढ़ने जा रही हूं, और हां सवाल जवाब जरूर होंगे जैसा कि आपने लिखा है, लेकिन पहले इबारत के बारे में जो आपने अच्छे शब्द बहुत ही सुंदर संदेश भेजे हैं वो पढ़ देते हैं। इबारत के बारे में आप कहते हैं कि एक ऐसी इबारत है, ऐसा खामोश इश्क की कहानी है जहां नजरों की मुलाकात, हल्की मुस्कान और अनकहे एहसास धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाते हैं। एक नजर से शुरू हुई कहानी दिल में सपने जगा देती है, कभी तस्वीर बहाना बनती है तो कभी बारिश और शाम का मौसम मोहब्बत को और गहरा कर देता है। साथ ही इन श्रोताओं ने बहुत से गीत गेस कर लिए हैं, लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से गीत पूरे होते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुगम सुखांत प्रेम कथा, इस तरह से इबारत लग रही है हमें, और यहाँ प्रिया और प्रियतम सहजता से एक दूसरे को मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी रंग लाती है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ये इबारत में दो प्रेमियों के बीच पनपते प्यार की सुंदर दास्तां है। आपस में नजरें टकराना, बातें करना, तस्वीर खींचना, ये एहसास, यही तो जिंदगी है, और साथ में एक साथ आगे बढ़ना। और साथ ही इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं, देखते हैं लिस्ट के साथ मेल खाते हैं कि नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सिंदूरी, मखमली, शीतल, मनोरम, उस नीरव शाम की बेला में दो अनजान दिलों के बीच की एक चुंबकीय आकर्षण इस इबारत में नजर आता है। और भी काफी कुछ उन्होंने लिखा है और बहुत ही सुंदर शब्दों में ये संदेश हम तक भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता जिन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया है कि शाम का समय था और शाम की हल्की हवा चल रही थी। ये बात उस समय की है जब उनकी शादी के कुछ दिन बीते थे और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ थे, और साथ ही साथ वो अजमेर से हैं लेकिन मुंबई घूमने के लिए आए थे, और मोटरबोट का सफर, समुद्र की लहरें, हल्की हवा, ये सब चीजें इबारत पढ़ते हुए उन्हें याद आ रही है। और उन्होंने इसी तरह से कैमरा निकाला और एक शानदार तस्वीर खींच ली थी जिनसे उनकी धर्मपत्नी शर्मा गई, और वो तस्वीर बहुत प्यारी है, बहुत ही यादगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, आपके इसी तरह के जो अनुभव है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आईना बहुत सच्चा होता है मगर गुजरे जमाने के अक्स को दिखा नहीं सकता। आईना सिर्फ आज में जीता है जबकि तस्वीरें बीते लम्हों को कैद करना जानती है, और जब भी ये पन्ने पलटते हैं तो यादें खुल जाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत नूरी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा और खयाम का संगीत। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम में जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया था सिलसिला फिल्म से, उस गीत के लिए काफी सराहना आई है और ये भी कहा गया है, हमारी श्रोता लिखती है कि काफी दिनों के बाद ये गीत उन्होंने सुना है और लिखती हैं कि ये गीत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सुरीला सफर में ये आता तो दोपहर में है, लेकिन इबारत की इबादत से पता चलता है कि इबारत भरी दोपहर में शाम की बातें हो रही है, नजरें मिलती हैं, थोड़ी बहुत झिझक के साथ फोटोग्राफी भी की जाती है और बेखुदी जैसे पथों पर इबारत बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखते हैं गीत आपके लिस्ट से मिलते हैं या नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत तो आप जो भी सुनवाना चाहें सुनवा दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अब इबारत के शब्दों में वो नहीं फंसेगी, ये भी अच्छी बात है। जो जहां है बस उसे एंजॉय किया जाए, उसमें आनंद ढूंढ लिया जाए, ये इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के बारे में कि यहाँ इस गीत में लोक संगीत और पारंपरिक संस्कारों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। ये जो गीत है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश, शादियों या उत्सवों के उल्लास को बताता है। एक नववधु या प्रेमिका के मन की लज्जा व प्रेम का अनूठा चित्रण भी मिलता है इस गीत को सुनते हुए। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से आपने ये गीत सुना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, इबारत को लिखते हुए और पढ़ते हुए

कहीं ना कहीं एक सुकून जरूर महसूस होता है। तो इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ा ठहरना भी जरूरी है, और उस ठहराव के लिए ताकि हम फिर से अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ चलें पूरे जोश के साथ, तो ये ठहराव बहुत जरूरी होता है, ये पड़ाव बहुत जरूरी होता है शारीरिक और मानसिक सुकून के लिए, दोनों चीजों के लिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि आपने अभी अभी हाल फिलहाल ब्रेक जिसे कहते हैं, या ये ठहराव जिसे कहते हैं, या पड़ाव जिसे कहते हैं, या अपने काम से या जिम्मेदारियों से कुछ वक्त अपने लिए निकालकर अपने आप को ताजगी से भरपूर कैसे किया, कब किया, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भारत पढ़ते हुए अगर इससे जुड़ी कुछ अनुभव है आप हमें लिख भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत हसीना मान जाएगी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वे तो होली से किसी तस्वीर में कैद होकर जीवन भर के लिए खूबसूरत याद बन जाते हैं। इंसान भी हवा के झोंके की तरह है, जो कभी जीवन में ना हुआ वो घटित हो जाता है। इसीलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए। कौन जाने जिसे आप साधारण घटना समझ रहे हो, समय की सच्ची और खूबसूरत इबारत हो जिसे आप बार बार जीना चाहते हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी कोई रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान से शुरू हो जाता है। कुछ मुलाकातें तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद हो जाती है और फिर वही खामोश पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब बन जाते हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और एक नजर में दिल को अपना सा लगने लगता है। फिर उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल मन में एक मीठा सा ख्वाब सजा देते हैं। कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है गीतों की लिस्ट, जो वो कह रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं गीत। उनमें से कुछ तो शामिल हो चुके हैं, कुछ अभी अभी शामिल हुआ है, अभी अभी जो शामिल हुआ है वो भी लिखा गया है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिस्ट लिख डाली है, लेकिन हमें इंतजार है आपके उन संदेशों का। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपने आप को सुकून देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जाते हैं, ऐसे कौन से अनुभव है जो इस इबारत को पढ़ते हुए आपको याद आ रहे हैं, आप वो किससे हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस गीत की तरफ, देखते हैं ये गीत लिस्ट में है या नहीं। आपकी लिस्ट में

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, हीरा पन्ना फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि शुरू के जो दो गीत सुनवाए गए वो सुनकर एकदम आनंद आ गया है। एक श्रोता लिखती है कि ये जो गीत तस्वीर उतारता हूं अभी इन्होंने सुना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने पहली बार सुना है, लेकिन कैसा लगा ये गीत ये जरूर लिखें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये जो गीत है ये कुछ अलग है, तस्वीर उतारता हूँ इस तरह के लिरिक्स जो है उन्होंने सोचे नहीं, लेकिन बहुत ही अलग तरह के लिरिक्स है, फिर भी बहुत ही खूबसूरत गीत है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़कर जो साथी मित्र बन गए हैं, हम उन्हें जानते हैं या ना जानते हैं फिर भी परिवार के सदस्य की तरह महसूस होता है, जिनकी तस्वीर फेसबुक पेज के माध्यम से दिल में उतर गई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत को मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि इबारत पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि मोहब्बत भी कैसी अनकही सरगम है, न शब्द चाहिए न कोई इकरार, बस एक नजर काफी है, और शाम की हवा में लहराती चुनरिया और आंखों में उतरता कोई अनदेखा संसार, जीवन जैसे ठहर गया हो और उस ठहराव में ही सुकून है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत प्रेम के उस एहसास को समर्पित है जो इंसान के दिल को बेखुद कर देता है और जिंदगी को सपनों तथा उम्मीदों से भर देता है। प्रेम का चरम बिंदु वो है जहाँ दो अलग अलग राहें बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से एक ही दिशा में बढ़ चलती है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जब तस्वीर की बात चली है तो क्यों ना हम उन तस्वीरों की बात करें जो हमारे पुरानी एल्बम्स में भरी पड़ी है और उनके द्वारा हम पुरानी यादों तक पहुंच जाते हैं। तो आज जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी बात भी है, और डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज, एक क्लिक में न जाने कितनी सारी तस्वीरें ले लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उस जमाने में

हाँ, एक रोल में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ तस्वीरें हम ले सकते थे, एक अंक होते थे कि इतनी ही तस्वीरें आप खींच सकते हैं, और फिर इतने दिनों तक उसका इंतजार करना पड़ता था उन तस्वीरों को घर तक लाने में, और कैसी तस्वीर आई है, किसकी अच्छी आई है, किसकी ठीक नहीं आई है, वो सब यादें आप मुझसे साझा कर सकते हैं। क्या आपने वो सब तस्वीरें संभाल के रखी है? किस तरह से संभाल के रखी है? क्या उन पुरानी एल्बम तक फिर से कभी कभी बैठकर जाते हैं, सुकून के पल बिताते हैं, देखते हैं क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज हमारे मोबाइल फोन की तस्वीरों में? लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगले गीत तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, ये वादा रहा फिल्म का नाम था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बस यही याद रखना चाहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखती है कि आज मैं विविध भारती के मोबाइल पेज के पहले की फीलिंग जो सिर्फ हम रेडियो सुनते थे वो आजमाना चाहूंगी और बस गाने सुनना चाहूंगी पहले की तरह। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि हमारे लिए वो पल बड़े ही अनमोल होते हैं जब हम चार दोस्त मिल बैठते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और सच कहें तो कुछ समय से मानो हम मुस्कुराना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमारे घर काम भी चल रहा है और जिन फूलों को देखकर हम सुबह मुस्कुराते हैं वो सब हमने कुछ दिनों के लिए छत पर रख दिए हैं, लेकिन अब जरूर मुस्कुराएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जुबां खामोश है पर दिल में एक शोर सा है, तेरी तस्वीर का जादू ढलती शाम में कुछ और सा है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है कि तस्वीर उतारने के कई साधन हैं, एक आंखों से उतारी जाती है, दूसरी मोबाइल से उतारी जाती है या कैमरे में, और तीसरी पेंटिंग के जरिए कल्पना के द्वारा उतारी जाती है या बनाई जाती है। जी हाँ, तस्वीरों की तो बहुत से साधन हैं उतारने के, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर हम यादों में जो खो जाते हैं, क्या उन तस्वीरों को सहेज के रखते हैं? वक्त मिलता है वहां जाकर उन तस्वीरों को देखने का, और क्या फर्क है उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में, बताएं मुझे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलशन बावरा ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। तस्वीरों की बात चली और बहुत से मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं धड़ाधड़ करके, और लिखते हैं कि जो बात तुझ में है वो तस्वीर में कहां। ये बात तो बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत देर से फेसबुक पेज मिला नहीं, कहीं मिस हो गया था इसीलिए देर से मैसेज कर रहा हूं। कोई बात नहीं, आप जब पहुंच जाएं, जब मैसेज करें, हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अभी सिंगापुर में है और हर एक साल कहीं ना कहीं घूमने जाती हैं वो, और हर एक जगह से कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर आती हैं। साल भर उन यादों को संजोए हुए एक अच्छा समय बीतता है, और इस वक्त वो सिंगापुर में है। वहां इतने प्यारे बीच है और हरियाली है जहां उनका मन बहुत आनंदित फील कर रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वक्त जरूर निकालना चाहिए कहीं निकलने के लिए। वो कहते हैं ना, ठहराव बहुत जरूरी है फिर से एक शुरुआत करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में पुराने और नए दोनों ही गीत बज रहे हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, दोनों ही सुनने को मिल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो पुरानी तस्वीरों वाले जो दिन थे वो बहुत बढ़िया थे। उन दिनों कैमरा एक अलग ही तरह का उपकरण हुआ करता था और जिसमें रील होती थी, संभाल कर देख कर हम तस्वीर खींचते और यादें

रील में कैद हो जाती। जब रील धुलकर आती, यादें रंगों में सजकर रूबरू होती तो बड़ा मजा आता और एक तरह से जो यादें हैं उनका पुनर्जन्म होता। ये देखकर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते कि भाई किसकी तस्वीर किस तरह से आई है। वो जो पल थे वो कुछ अलग ही थे। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले तस्वीरें लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था, इसलिए उनमें सब्र और यादों की मिठास होती थी। आज एक क्लिक में तस्वीर सामने आ जाती है, मगर पुरानी तस्वीरों जैसा उस पल का इंतजार और ठहराव कहीं कहीं बहुत याद आता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल महाशय जो है, इंटरनेट जो है, बहुत उन्हें परेशान कर रहा है, आंख में चोली खेल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ ही लिया है हमारे इस प्रोग्राम को और इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और श्रोता लिखते हैं कि आधे घंटे का सफर निकल चुका है, आधे घंटे से ज्यादा का सफर निकल चुका है और घबराहट हो रही है कि सुरीला सफर में आज क्या हो रहा होगा, लेकिन अभी भी बाकी है, आप हमारे साथ बने रहें।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरों की दुनिया में अगर प्रवेश किया जाए तो चाहे वो एल्बम हो या फोन, वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंत तक आज के इस प्रोग्राम के समापन की ओर, तो हमें भी पता नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के दौर में फिल्म या तस्वीर उतारने के लिए विशेषकर फोटोग्राफर को बुलाया जाता था, आजकल हर कोई फोटोग्राफर है। और पहले किसी विशेष अवसर पर खींची जाती थी तस्वीरें और उनकी अहमियत कुछ अलग होती थी। आजकल तो हर पल पल आप तस्वीर खींच सकते हैं और गूगल महाशय ने संभाल के रखा इन सबको। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पुराने कैमरे को उन्होंने शोकेस में सजाकर और सहेज कर रखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि डिजिटल फोटो से हमारे वो पुराने फोटो देखने में और उसमें खो जाना उन्हें बेहद पसंद आता है। ये जरूर है कि डिजिटल फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम नहीं कर सकते, लेकिन जो एहसास है वो तो कुछ अलग ही है। जी हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहले कैमरे रसायनों, नेगेटिव और रीलों पर काम किया करते थे जिन्हें बनवाने में समय लगता था। आजकल के समय में स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों से तुरंत फोटो आ जाती है और तस्वीरों को एल्बम में सुरक्षित संभाल के रखा जाता था, आजकल फोन में सुरक्षित है और नेट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल, इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत इस प्रोग्राम का।

साथ ही ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाएंगे। ये गीत आप सागर फिल्म से सुन रहे थे इस वक्त किशोर कुमार की आवाज में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न करते हैं। आज आपने ये सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

8 सितंबर का दिन दुनिया में बड़ा मायने रखता है। इस दिन होता है विश्व साक्षरता दिवस। दरअसल विश्व साक्षरता दिवस आज से नहीं बल्कि सन 1966 से मनाया जा रहा है। 1965 में ईरान के तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व साक्षरता पर विचार किया गया और 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने ये ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि दुनिया के 127 देशों में से 101 देशों में साक्षरता एक समस्या बनी हुई है। भारत का अगर हम आकलन करें तो जो आंकड़े मिलते हैं वो ये बताते हैं कि 1947 में हमारी साक्षरता 12% थी और 2011 का आकलन ये बताता है कि हमारी साक्षरता की दर 74% तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये 100% तक क्यों नहीं पहुंची है? वो कौन से 25% लोग हैं जो अभी भी लिखने पढ़ने की दुनिया से दूर हैं?

0: राजा बेटा बन।
1: सवाल ये है कि साक्षरता की दर हमारे देश में 100% क्यों नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत वर्षों से, बल्कि कहा जाए कि कई दशकों से अभियान

चलाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को कम से कम साक्षर बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आती और बदलती चली जा रही है, उसमें केवल साक्षर होने से अब काम नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी की साक्षरता बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। जाहिर है कि अब चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें अपने देश की आबादी को साक्षर भी बनाना है और टेक्नोलॉजी के साथ भी उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: तेज से क्या होता है?
1: तीतर।
2: तकदीर।

पूरी दुनिया में 77.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो साक्षरता से दूर हैं। बच्चों का भी यही हाल है। दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह एक तो आर्थिक विषमता है, दूसरी तरफ जागरूकता की कमी और तीसरा भौगोलिक रूप से बहुत मुश्किल इलाके जहां स्कूल नहीं है या बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनसे बहुत दूर हैं। भारत में इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत जोरदार तरीके से कोशिशें चल रही हैं। देश के कोने कोने में सुदूर अंचलों और गांवों में स्कूल हैं, शिक्षा कर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए दोपहर का भोजन तक स्कूल में ही दिया जाता है, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाहिर है कि जब हर उम्र के लोग साक्षर होंगे, शिक्षा से नाता जोड़ेंगे तो उनके पर खुलेंगे, वो ऊंचे आसमानों

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर

0: चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। यह मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 के टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
4: श्री विक्रम सिंह

0: जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
1: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का

0: लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
2: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। 9-2-11 फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसटी बर्मन का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन की तर्ज और इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है।

0: ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

सिंह जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ सिंह जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

तुमसा नहीं देखा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या हाल है?
1: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
0: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी का तो सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे फिर संपादकीय वाला पृष्ठ फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है विषय वस्तु मिल जाता है।
1: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं। तो
0: अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए। तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी तब तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था इंटरनेट का सोशल मीडिया नहीं था तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और तो फिर जाना ना पड़े तो वो खबर सबसे पहले देखते थे कि एयू क्लोज्ड याद होगा है ना
1: अपने बिल्कुल तो, आपने क्योंकि जो जिस समय दौरान दौर में हम लोग थे तो उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे।
0: तो एक मिनट इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे। अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया प्रतिदिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर कि जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली कुहासा छाया हुआ घनी बदली है ठंड से हड्डियां कपकपा रही हैं ऐसे में लगता था अरे बाप रे क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी और घर से बहुत दूर थी तो पन्ना पलटते थे एयू क्लोज्ड जब आता था आहा आज तो नहीं जाना है घर पे आराम से रजाई ओढ़ के बैठना है। तो ऐसी कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान तो जरूर लिखिए बहुत संक्षेप में लिखिए हमारे श्रोता
1: है ना। और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक करना यानी कि किसी भी विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं यहाँ वहाँ कहीं से भी किताबों से अखबारों से सब जगहों से लेना पसंद करते हैं।
0: अच्छा जरा बताइए शिक्षा क्यों जरूरी है?
1: भाई अगर शिक्षा अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ी क्या पाएंगे किताबें शून्य नजर आएंगी
0: और किताबें कैसे पढ़ेंगी और करियर के लिए कैसे आगे बढ़ेंगी?
1: पहले तो किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: शिक्षा जरूरी है क्यों जरूरी है और साथ में आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है दे रहे हैं या नहीं या बचा लिया है? खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं ऐसा भी मुद्दा होता है घरों में वो भी बताया
1: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में सुरुचि वाघ Jombe.com की संस्थापक सीईओ हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उससे पहले तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखिए शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चों को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीजें अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ABCD, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते हैं, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है। और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहां पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर। अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल जाने की तो वो भी ठीक है, लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी आचार व्यवहार, बात करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं माता पिता अकेले। जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत जरूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर

0: भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है जहां से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, और उन सबके लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से अपने अंदर से जो क्या आता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है, और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है। और इसके साथ साथ ममता जी, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
1: बिल्कुल, और महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। एक समय था कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थी और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था कि ठीक है इनका, इन्हें क्या होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा कर एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहां का कामकाज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है, महिलाओं को भी लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए। और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जैसे बहुत सारे काम हैं जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर। तो अगर वो शिक्षित नहीं होंगी तो ये नहीं कर पाएंगे।
0: जी, और ये बहुत जरूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं बेटियों को इन सब चीजों की जानकारी जरूर दें।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
0: बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
1: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है। उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान कौशल आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने के निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है। तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हां, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व या अच्छी बातें अनिवार्य रूप से समाविष्ट करती हैं। और इसी तरह से हमारे एक साथी और लिखते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। आज शिक्षा के बिना आज के जमाने में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। व्यक्ति सफलता की और अग्रसर नहीं हो पाता है, अपने आप को लाचार समझने लगता है, संसार और जीवन को ठीक से समझ भी नहीं पाता। इस कारण शिक्षा जरूरी है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास, ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानता को दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि वाघ जॉम्बे.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर जॉम्बे की सह स्थापना की। आखिर जॉम्बे क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है, तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहां से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस आकर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आईं। वे समझ चुकी थीं कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर जॉम्बे की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी। एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेटिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार को मापने की बात वो करती थी, तो कई पुरानी सोच वाले अधिकारी उन पर शक करते थे और एक युवा महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में कॉर्पोरेट बोर्डरूम में अपनी बात मनवाना और भरोसा जीतना एक बहुत दोहरी चुनौती थी। लेकिन सुरुचि वाघ ने हार नहीं मानी। उन्होंने जॉम्बे को केवल एक डेटा कंपनी नहीं बनाया बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह मिलाया कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थीं।
0: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली। एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
1: सुरुचि वाघ की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्ता भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और

0: भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती हैं और उन्होंने खास पहचान बनाई
1: जी। और हम लोग सुनते हैं
0: एक गाना सुनते हैं।

सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के, फूल कहती है

0: की खबर से अपडेट रखता है, मगर अब आज का जो जमाना है वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था। ये सारी मैगजीन चंदन, चंपक, नंदन और चंदाबामा वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे, तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती थी।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: आते भी थे,
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे। देखिए अंत में क्या, शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जब बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे। और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान, शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था। और देश दुनिया की जो खबरें होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या
1: कार्टून का भी रहता
0: था, तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठाकर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकलें लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
1: लेकिन शिक्षा का यही फायदा हुआ ना कि कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए,
0: साथ में पढ़ने का शौक, क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है
1: कॉलम आया करता था,
0: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
1: और ममता जी, अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उस
0: वर्ग पहली होती
1: हाँ,
0: थी
1: हाँ वो भी, और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते करते थे वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूं तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं,
1: वो हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना,
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी है जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती है, लिखती भी रहती है कुछ कुछ, उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूं। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया

0: कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
1: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताजा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूं, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है। पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए तो बच्चों के पास उनके उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए,
1: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है। और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके, बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूं तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि।

0: देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट। शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहां पर ये कहना सचमुच बहुत जरूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहां पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में आने वाली पीढ़ी में, तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिन्दी और इंग्लिश अखबार आता है, तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूं। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज मुझे मतलब लगती, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
0: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ ले, वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू, वो आकृष्ट किया करती थी।
1: वही मैं कहने वाली थी। और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा चुका
0: है। और पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकालकर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी, स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूं और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूं, लिखती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट न जाए। और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
1: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बादी में टाइम मिलता है, महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूं। और एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे तब हमारे यहां नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे। उस समय इंदौर में पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था,

0: सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज, अब भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह देखती हूँ।
1: सही बात है,
0: राशिफल भी हम देखा करते थे, रोजाना वाला राशिफल,
1: रोजाना वाला
0: आज क्या होने वाला है।
1: जी जी।
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था, तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा,
1: शुभ होगा। और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
0: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही कहते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: ही राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई

0: विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना, तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक कर देना, घर का घाट कर देना।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
0: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भागदौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
1: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल ये बात, बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई हैं, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगुसराय, इश्क में मरजावां, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है, और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा

0: रियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
0: जी।
1: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूं, और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूं। इट्स एन ऑनर।
0: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है, या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
1: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, यू नो, टीचर टीचर नहीं खेला होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है, और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं, बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
0: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी, लेकिन जब ये तय किया होगा कि अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
1: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा, और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था, मेरे रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहां बैठा हूं विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को, उनकी नकल उतार के जो एक्टर्स थे हमारे, उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया। और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको, दूरदर्शन कशीर, उस पे मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड, कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पे काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
0: जी, तो एक बेस बन गया आपका वहां काम करते करते। जी, तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी, किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
1: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है, मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहां स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहां से निकले, फिर हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए, हम बिल्कुल बेघर हो गए थे, उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया कि मुंबई इसलिए आऊंगा कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
0: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित की अगर हम बात करें।
1: मुल्क था और वो पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो

0: याद आना, वो सब कुछ आना, यू नो, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको यू नो गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया, मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
1: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला ले?
0: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
1: जीना या मरना या?
0: जी हाँ।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: यहाँ।
1: तो विनीत जी, जैसे कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलोसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बन जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
2: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी जो उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद

0: मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है
1: जी।
0: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो एज अ चॉकलेट बॉय मैं ये दोनों शोज कर रहा था, ये कुछ दो ढाई साल तक चलता रहा
1: जी।
0: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहां से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे तो कभी भी फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा
1: जी।
0: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो, या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा। तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो मां था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे
1: जी।
0: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
1: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
1: जी,
0: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहां तक पहुंचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता
1: जी,
0: तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी
1: जी, वो स्वीकार करना बहुत
0: जरूरी है। उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
1: जी,
0: मैं मानता हूं यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहां पर बैठकर बात कर रहा हूं।
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको, और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है, लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान देके प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा
1: जी। तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूं और मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ, उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित्र में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था, और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी

0: चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूँ कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली आए,
1: आनंद फिल्म से।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो विनीत, ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए, या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट होती हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहां जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है
1: जी,
2: जब सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुनीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
2: मेरा जो
1: कितने घंटों का
2: पॉपुलर शो था माय का, वहां कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि

0: चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल कैसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
0: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे। हमारे ऊपर चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था और मैंने लगातार बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया तब तक मैं सेट से हिला नहीं और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर। और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूं। तो ये
1: और
0: बहुत,
1: तब तक बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए।
0: ये 2 दिन मैं सोया हूं उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है।
0: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का हम सुन ले सब।
0: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते ही ये गीत।
0: बिल्कुल।

थी, उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी, जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले, तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी

0: इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और यही चीज है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौटकर चले जाते हैं। क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है
1: जी।
0: और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते
1: जी।
0: क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया
1: जी।
0: लेकिन हाँ उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है
1: जी।
0: लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
1: खुश होकर
0: क्लब्स में जाते हुए या पार्टीज में जाते हुए, उस पे ना जाएं शुरू में। करें लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए, सोचा होगा कि साल भर चलेगा लेकिन, और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए या आपने लग्जरी कार्स ले ली या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं, उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये बहुत जरूरी चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए
1: जी। और जैसे कि आप इन दिनों टीवी फिल्म ओटीटी वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
0: देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं। सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है
1: जी।
0: यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो
1: जी,
0: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं। वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है। कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
1: जी,
0: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानी को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है। कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया

0: हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे। कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार मुझे लगता है फैलेगा।
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया। ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं
0: जी हाँ।
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सबका क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की। और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में
1: जी,
0: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूं मैं जब भी मैं वहां जाता हूं। और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई। उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टारकास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें
1: जी।
0: एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूं जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहां रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28 अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यहां आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहां ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहां की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहां पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होता है क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मजे की बात यह थी कि जब मैं नाइजीरिया गया और नाइजीरिया इतना दूर है यहां से, और जब मैं वहां, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देखे कि वहां का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे
1: जी,
0: वहां पर यहां की एक चैनल वहां पर टेलीकास्ट होती है जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहां पर टेलीकास्ट होता है। और जब मैं वहां गया और वो इतना पॉपुलर शो है वहां कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है
1: जी,
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे, इंडियन एक्टर
0: वहां कैसे हूं। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे है? मतलब यहाँ के लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं, कई बार और भी करते होंगे कुछ ना कुछ, आपके लिए फैन मूवमेंट कब हुआ किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहां पहली बार मैंने सलमान खान को देखा और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूं बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूं, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली
1: जी।
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं और कोई खड़ा है कोई कुछ है, तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूं
1: जी।
0: सो मैं पूरा

0: में जब गया मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं। एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो।
1: जी,
0: ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो। ही वॉज प्लेइंग माई डैड इन दैट शो, इन दैट पायलट। व्हेन आई सॉ हिम, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक मेरा फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूं आज मैं उनके सामने खड़ा हूं। और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका, मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ पे राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगे मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे?
1: बावर्ची एनी डे। मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से काम किया काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना,
0: हाँ, बार बार देखी जाती थी बागवान से पहले ही देखी जाती थी।
1: बागवान से पहले अगर कोई फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है
0: जी। और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा लगता है। वो
1: उनका स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वॉज, वो कभी कहा जाता है ना कि सबसे पहले और सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग स्टार
0: जी, उनका एक अलग ही चार्म था। नमक हलाल देख लीजिए आप।

0: में वो आते हैं, कुछ और बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन जैसे न कभी कोई होगा न कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया जा
1: सकता है। ये सब असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है। तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है, क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए
0: जी।
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत राणा जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए, तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रहना है
0: जी।
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूं
0: जी।
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूं वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है। वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रहना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है, तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रहना से कोई लेना देना नहीं है
0: जी।
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो विनीत रहना है जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
0: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं, शायद इतने साल से काम करते करते आपको।
1: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमीडिएटली फोन निकाला तो उसपे काफी सारे मिस कॉल्स थे। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है।
0: अच्छा।
1: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए
0: जी।
1: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ, और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजन लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस मेंटेन करना आसान रहता है।
0: और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
1: जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए, क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा।

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी। और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैंने उनको देखता रहता था। उनका नाम चांदनी था
0: जी,
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे, तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन की उन यादों तक जाता है गाना। तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पर सबको याद रहती है, लेकिन स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन एक्टर उसके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस ना करूं, अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूं, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूं जब तक कि मैं वही ना बन जाऊं जो ये लाइन्स बोल रहा है
0: जी।
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था, और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे, जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज बोल रहा हूं, वो याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूं, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं, तो अगर आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे। उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने, उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आरडी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी, इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया, मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है, और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन कहां रे उसको 100% रिमिक्स करना चाहूंगा,
0: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हैं हम।
1: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूं, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मजा आया और दोबारा आना चाहूंगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर श्रीमती मीनाक्षी डामोर से बातचीत, छोटे छोटे कदमों से तय होते बड़े रास्ते पर चर्चा, बेहतर भविष्य के लिए निवेश जरूरी इस विषय पर चर्चा, मानसून और फंगस पर चर्चा, साथ ही सुनेंगे टिप्स रसोई घर से और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे शाम 5:30 पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से।

सुरज का पंजीयन पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे हमारे जयपुर के एमजी से 6:30 से 7 बजे तक 7 बजे आप सुनेंगे किसान मिनी कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से 7:30 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे जयपुर केन्द्र से

समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 11 बजे।

कल सुबह 6 बजे के 5 मिनट पर आप सुनेंगे चिंतन विजयपुर के अंदर से, यहीं से 6 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फंदना रामचरित मानस का नाम सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो से 6 बजकर 30 मिनट पर। खेती में बात का समय रहेगा 6 बजकर 45 मिनट पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर। 7 बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे फातायन कार्यक्रम।

विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर कल सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे हमारे मुंबई केंद्र से। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो से 8:45 पर। कुछ दिन से प्रोग्राम होगा 8:15 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में आप सुनेंगे 9:30 पर और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी। 7 बजे का समय रहेगा बैरानी बाग का। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई के अंदर से और रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये तो था कार्यक्रम फेवरेट।

एफएम गोविंद 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। शाम के 5:05 हुए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लोक।

असल दुनिया के सुकून और धैर्य से दूरी ने सबके मन को विचलन एक तरह का खलल दे दिया है। आक्रोश बढ़ रहा है और दुनिया में अकेलापन भी निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हर व्यक्ति अपने आप में खुश रहना और अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। खुशी और संतुष्टि को सभी दो मिनट में ढूंढ रहे हैं। स्थायी खुशी का ठिकाना कहीं और है, इसकी तलाश में उपकरण मदद नहीं कर पाएंगे, ये आप सभी को समझ जाना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ नारी लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अपनी बहन तस्लीम कौशल का प्यार भरा नमस्कार। और आइए बहनों, रुख करते हैं चर्चा की ओर। विषय है, छोटे छोटे कदमों से तय होते हैं बड़े बड़े रास्ते। जी हाँ बहनों, जीवन में कई तरह की बाधाएं आती रहती है। कुछ बाधाएं छोटी छोटी सी होती है तो कुछ धीरे धीरे उन्हें मोटा

0: अपना लेती है। बस क्षणिक रुकावटें होती है, कुछ निराशाजनक बातें भी होती है और कुछ ऐसी होती है जो होती है हमारे लिए बिल्कुल ही अप्रत्याशित चुनौतियां। मानो जब चुनौतियां सामने आने लगती है तो अक्सर मैं नहीं कर सकता हमारे मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है कि इस काम को तो मैं नहीं कर सकता हूं या इस कार्य को तो मैं आगे नहीं कर सकती हूं। इस मानसिकता में फंस जाना स्वाभाविक सा महसूस होने लगता है। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो कौन अपनी सीमाओं को बंद होते दरवाजे और पहुंच से बाहर लगने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन बात यह है कि तरक्की का मतलब पूर्णता नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं। इस पर ध्यान को केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों न हो, हमेशा तरक्की छोटी छोटी चीजों में होती है, क्योंकि समय के साथ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजों में उन्हें बदला जा सकता है। हर छोटा कदम सही दिशा में एक कदम माना जाता है। यह मानना आसान है कि केवल बड़े और प्रभावशाली प्रयास ही परिणाम लाते हैं, लेकिन वास्तव में अक्सर छोटे और निरंतर प्रयास ही हमारे जीवन को आकार प्रदान करने का कार्य करते हैं। पहले छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बड़े लाभ हमें आगे जाकर दिलाते हैं। कभी भी कार्य की विशालता पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। चाहे कार्य कितना भी बड़ा हो, उसे छोटे छोटे रूप में आपको निरंतर करते रहना चाहिए। अवश्य ही वे काम बड़ा होने के बावजूद आप कम समय में और अच्छी तरह से निपटा देंगे। जो आप उठा सकते हैं, इसी तरह पानी की बूंद जो एक हो, वो भले ही हमें उस समय महत्वहीन लगे कि एक बूंद हमारे क्या ही काम आएगी, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी बूंदे मिलकर पत्थर तक को तराश करने का हिम्मत रखती है। पहले जब हम अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारे भीतर कुछ न कुछ बदलाव अवश्य ही आती है। कठिनाई भय निराशा का बोझ हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं और संकीर्ण सोच का दायरा बढ़ने लगता है। इसी तरह से छोटे छोटे कदम जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हम उससे कई बड़े बड़े रास्तों को पार कर लेते हैं। ये किसी ने बिल्कुल सच कहा है और अवश्य ही हमारे साथ जीवन में ये सब होता ही है। और आइए बहनों, रुक करते हैं हम चर्चा की ओर। विषय है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं श्रीमती मीनाक्षी डामोर से। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, सही और गलत में अंतर करना सीखता है तथा समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी शिक्षा के प्रथम चरण को साक्षरता कहा जाता है। साक्षरता केवल पढ़ना लिखना सीखने का नाम नहीं, अपितु यह व्यक्ति को ज्ञान, समाज, आत्मविश्वास और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करती है। साक्षरता के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि बहनों आप सभी को विदित है कि आज 8 सितंबर ही है, यानी आज दिवस है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं मीनाक्षी जी डामोर, जो कि आबादपुरा विद्यालय में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं इसी दिवस पर कुछ जानकारी इनसे। सबसे पहले स्वागत करते हैं मीनाक्षी जी, नमस्कार
2: जी। नमस्ते
1: मीनाक्षी जी, हमारी बहनों को थोड़ी ये जानकारी दें कि ये दिवस कब और कैसे मनाना प्रारंभ हुआ, इस हेतु थोड़ी हमारी बहनों को कुछ जानकारी दें।
2: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी वर्ष 1966 में। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1967 से इसे दुनिया के विभिन्न देशों में मनाया जाने लगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा निःसाक्षरता को समाप्त करने के लिए प्रयासों का बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, अब हमारी बहनों को थोड़ी ये भी जानकारी दें कि हमारे जीवन में, जैसे हम दैनिक जीवन की जब बात कर रहे हैं, तो दैनिक जीवन में हमारी साक्षरता का क्या महत्व है।
2: साक्षर व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकता है। वह समाचार पत्र पढ़ सकता है, आवश्यक दस्तावेजों को समझ सकता है, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं

0: उपयोग कर सकता है तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सकता है। शिक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसे आत्मनिर्भर बनने से निर्भर बनने में सहायता करती है। साक्षरता का महत्व केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब किसी समाज के अधिक से अधिक लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं, तो समाज में गरीबी, अंधविश्वास, बाल विवाह, भेदभाव और शोषण जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता मिलती है। इसलिए साक्षरता किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल,
0: साक्षरता को बढ़ावा देना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के प्रत्येक नागरिक का इसमें योगदान होना चाहिए। हमें अपने आसपास के बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब हमारी बहनों को आप ये भी बताएं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की मीनाक्षी जी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो हमारे भारत में साक्षरता के महत्व को लेकर क्या महत्व माना जाता है, थोड़ी इसकी जानकारी भी हमारी बहनों को दें।
0: भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में साक्षरता का विशेष महत्व है। देश में शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा अनेक योजना और अभियान चलाए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान, पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जैसे प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। आज के डिजिटल युग में साक्षरता का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रह गया है। व्यक्ति को डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल सुरक्षा की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसलिए आज हमें डिजिटल साक्षरता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। निसाक्षरता व्यक्ति केवल विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। निरक्षर व्यक्ति अक्सर अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं की जानकारी से वंचित रह जाता है। वह रोजगार के सीमित अवसरों तक ही पहुंच पाता है और कई बार दूसरों पर निर्भर रहता है। निसाक्षरता के कारण अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षित लोगों को अपने आसपास के निरक्षर बच्चों और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
1: अब हमारे बहनों को थोड़ी ये भी जानकारी दीजिए मीनाक्षी जी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन जब किया जाता है तो इस अवसर पर क्या क्या गतिविधियां रहती है, क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
0: इस दिवस पर विद्यालय, महाविद्यालय और विभिन्न सामाजिक स्थानों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालयों में विद्यार्थी सब पढ़े सब बड़े, शिक्षा और विकास की कुंजी और साक्षर भारत साक्षत भारत जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं।
1: बिल्कुल, अब हमारी बहनों को अगर अंत में आप और भी कुछ जानकारी देना चाहें जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो साक्षरता को लेकर, तो इस हेतु भी थोड़ी हमारी बहनों को जानकारी दें।
0: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें यह संदेश देता है कि शिक्षा केवल अधिकार ही नहीं बल्कि साक्षर और विकसित समाज की आवश्यकता भी है। साक्षरता व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, उससे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शक्ति देती है।

0: यदि हम वास्तव में एक मजबूत, विकसित और जागरूक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें हर बच्चे युवा तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करना होगा। हमें संकल्प लेना चाहिए कि ना कोई निरक्षर रहे और ना कोई शिक्षा से वंचित हो। किसी भी संदेश की प्रगति में महिलाओं की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षित महिला ना केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को भी बेहतर दिशा में देती है। इसीलिए महिलाओं को शिक्षा के सम्मान अवसर देना आवश्यक है। एक महिला को शिक्षित करना एक पूरे परिवार को शिक्षित करना है। एक विचार को ध्यान में रखते हुए लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा की विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने मीनाक्षी जी हमारे बहनों को दी। जैसा कि आपने बताया कि एक महिला को शिक्षित करना एक पूरे परिवार को शिक्षित करने के बराबर होता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वे हमने जैसे कि बात करी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर, हमारी बहनों को ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी और अवश्य ही इसे वे अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद देते हैं आपको मीनाक्षी जी कि आपने हमारी बहनों को इतनी प्यारी जानकारी दी। नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: बहनों फिर से रुक करते हैं चर्चा की ओर। विषय है मानसून और फंगल इन्फेक्शन। इसमें बातचीत करेंगे कि जननांगों की सफाई किस प्रकार रखी जा सकती है। बहनों, मानसून के मौसम में हवा में नमी और पसीना होने के कारण शरीर के संवेदनशील हिस्सों विशेषकर जननांगों में फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि बात करें रिंगवर्म, यीस्ट इन्फेक्शन और जोंक इंच का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसी कारण मानसून के दौरान जननांगों की स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं बहनों कि मानसून में फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या क्या रहते हैं। बहनों, बारिश में पसीना जल्दी नहीं सूखता, जिससे त्वचा में, मोड़ों में, हम कह सकते हैं जॉइंट्स में नमी बनी रहती है और फंगस यानी कवक को ऐसा ही माहौल चाहिए होता है। जब उसको ऐसा माहौल मिल जाता है तो वो उस जगह पर पनपना प्रारंभ कर देते हैं। यानी बारिश में भीगने, पसीने से भीगे कपड़ों को देर तक पहनकर रखने से भी फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। सिंथेटिक या टाइट कपड़ों को पहनने से त्वचा को हवा नहीं मिल पाती, जिससे फंगस और बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगते हैं और आपका शरीर खराब होने लगता है। बात करें कि जननांगों की सफाई और उनके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो बहनों, नहाने के बाद या वॉशरूम जाने के बाद जननांगों को साफ और सूखे तौलिए या टिश्यू से अच्छी तरह से सुखाएं, फंगस नहीं पनपेंगे। ध्यान रखें कि सफाई हमेशा आगे से पीछे की तरफ करनी चाहिए ताकि मलाशय के बैक्टीरिया आगे न आ पाए। हमेशा अंडरगारमेंट सूती होनी चाहिए ताकि जब भी कभी आपको ज्यादा पसीना होता है तो सूती वस्त्र उन्हें सोख पाते हैं। जननांगों को स्वच्छ रखने हेतु हमेशा उनकी सफाई गुनगुने पानी से ही किया करें। इसी तरह बहनों, तेज खुशबुओं का इस्तेमाल आप ना करें, इससे त्वचा को प्राकृतिक उनका जो शरीर का pH मान है वो गिरने लगता है और फंगस इन्फेक्शन फैलने लगता है। मेरी बात करें मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड्स को आप 4-5 घंटे में अवश्य ही बदलते रहें। चाहे आपको ब्लीडिंग कम भी हो रही हो, आप अवश्य ही सैनिटरी पैड को चेंज कर लें, इससे इन्फेक्शन का डर ना के बराबर हो जाएगा।

बहुत अधिक मीठे प्रोसेस्ड फूड से बचें क्योंकि ये भी फंगस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये तो थी हमारी जानकारी मानसून और फंगस इन्फेक्शन, जमीन आंगों की सफाई किस प्रकार रखें विषय पर। और आइए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबके
2: रुक करते हैं चर्चा की ओर। विषय

बेहतर भविष्य के लिए निवेश जरूरी। मानो आज के समय में केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं, उससे भी अधिक जरूरी है कि उसे सही तरीके से और सुरक्षित बढ़ाया जाए। यही वह जगह है जहां निवेश की भूमिका शुरू होती है। लोग नौकरी, बिजनेस या फ्रीलांसिंग से कमाते हैं, लेकिन अगर आप यह पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा रहे तो महंगाई के कारण उसकी वास्तविक कीमत धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसलिए समझदार वित्तीय कीमत धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसीलिए समझदार वित्तीय जीवन के लिए निवेश अनिवार्य है। अतः निवेश केवल अमीरों के लिए नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे वह छात्र हो या समय के साथ बढ़ता है और आर्थिक स्थिति देता है। इसीलिए आप निवेश करें और उद्देश्य यह रखकर आप

0: इसलिए आप निवेश करें और उद्देश्य यह रखकर आप अवश्य ही बचत करें। तो ये तो थी चर्चा और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: बातें तो हम आपसे और भी बहुत सी करना चाहते हैं लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी बहन तस्लीम को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप नारी लोक कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। 5:30 होने को यहां थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं माशूक फिल्म के गीत से। गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है श्याम सुंदर ने, आवाजें अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में अब सुनिए धर्मात्मा फिल्म में मुकेश और कंचन को कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है इंदिवर ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: हाँ।
1: अरे हाँ, वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हाँ।

0: तरसाया
1: फिर क्या हुआ
0: यूं समझो ना गले लगाया
1: ची ची ची
0: तब से सोती हूँ जागती हूँ लेकिन उसका नाम
1: कौन है वो दिल रुबा।

0: हसीना
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

अभी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया गीत सुना। वो लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने संगीत तैयार किया था आडी बमन ने। फिल्म का नाम था बुड्ढा मिल गया। 1942 अ लव स्टोरी। अब आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत बोल जावेद अख्तर के, संगीत आडी बमन का, स्वर दे रही है कविता कृष्णमूर्ति।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गड्डी ले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जब तक है जहां, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत, आवाज नीति मोहन और सोफिया अशरफ की, गीतकार गुलजार, संगीतकार ए आर रहमान।

जब तक है जहां अभी आपने इस फिल्म में नीति मोहन और सूफिया अशरफ को सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा

0: राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की फिल्म का नाम कुदरत।

उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा को सुनिए फिल्म ट्रैफिक सिग्नल में। तर्ज बनाई है संदेश शांडिल ने, बोल हिलेश शर्मा के।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का मेन चैनल है। 6:15 को ही प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियां।
3: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी पीढ़ियां।
4: श्रोताओं, कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। कभी उनकी कही हुई एक छोटी सी बात हमें बहुत आगे ले जाती है, कभी उनकी डांट उस समय तो बुरी लगती है लेकिन बाद में समझ आता है कि उसमें भी हमारी भलाई छिपी थी, और कभी उनका दिया हुआ एक छोटा सा प्रोत्साहन हमें वह करने की हिम्मत देता है जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा भी नहीं था। श्रोताओ, ऐसे ही लोगों में से एक है हमारे शिक्षक। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की भूमिका की, शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते की, अनुशासन और प्यार के बीच के संतुलन की, और इस बात की कि एक शिक्षक का व्यवहार बच्चे के जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ श्रोताओं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम एक गुरु एक रोशनी। जी हाँ श्रोताओं, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा इंसान की सोच, उसके चरित्र और उसके जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। श्रोताओं, कहा जाता है कि जब उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाए। जी हाँ श्रोताओं, और इसी विचार से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। यानी यह दिन सिर्फ एक शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे कहने का नहीं है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षक समाज के भविष्य को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सच्चा शिक्षक केवल ये नहीं कहता कि क्या करना चाहिए, श्रोताओं वह अपने व्यवहार और अपने जीवन से भी प्रेम, क्षमा, दया और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे केवल हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वे हमारे व्यवहार को देखते भी हैं।

0: अगर शिक्षक बच्चों से सम्मान से बात करता है तो बच्चा भी सम्मान करना सीखता है। अगर शिक्षक अपनी गलती स्वीकार करता है तो बच्चा भी अपनी गलती स्वीकार करना सीखता है। अगर शिक्षक किसी कमजोर बच्चे को प्रोत्साहित करता है तो उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जी हाँ, यही कारण है कि शिक्षक का व्यवहार बहुत मायने रखता है। और यहाँ एक बात हम सभी के लिए सोचने वाली है, शिक्षक होना आसान काम नहीं है। हर दिन शिक्षक के सामने अलग अलग स्वभाव के बच्चे होते हैं, कोई बहुत शरारती है, कोई बहुत शांत स्वभाव के हैं, कोई पढ़ाई में तेज, और कभी किसी बच्चे को एक बात समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऐसे में शिक्षक को कभी कभी डांटना भी पड़ता है, अनुशासन भी रखना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। लेकिन बच्चे को सुधारना जरूरी है, साथ ही उसे ये महसूस कराना भी जरूरी है कि मेरे शिक्षक मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे साथ है। जी हाँ श्रोताओं, इसी बात को समझने के लिए आइए सुनिए छोटा सा नाटक।
1: आरव, तुमने फिर होमवर्क पूरा नहीं किया?
2: सर वो मैं नहीं कर पाया।
1: आरव, कितनी बार समझाया है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ऐसा कैसे चलेगा? कल तक पूरा होमवर्क करके लाना।
2: जी सर। पता नहीं सर, मुझे ही क्यों बार बार डांटते रहते हैं। मुझे लगता है मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता।
3: क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो?
2: कुछ नहीं माँ।
3: कुछ तो हुआ है, बताओ।
2: अरे आज फिर से सर ने सबके सामने मुझे डांट लिया। मुझे लगता है सर को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं।
3: अच्छा, लेकिन उन्होंने डांटा क्यों?
2: अरे माँ, वो होमवर्क पूरा नहीं किया था ना।
3: तो आरव, गलती किसकी है?
2: हाँ है तो मेरी।
3: देखो बेटा, हो सकता है तुम्हें उनकी डांट अच्छी ना लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं। शायद वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा और गंभीर हो जाओ।
2: लेकिन माँ, अगर वो मुझे प्यार से समझाते तो?
3: बिल्कुल, तुम्हारी बात भी सही है। डांट के साथ प्यार और समझ हो तो बात दिल तक ज्यादा आसानी से पहुँचती है। तुम कल सर से जाकर बात करो।
2: पर क्या कहूँ?
3: बस अपनी बात शांति से कहना, पूछना कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे बेहतर कर सकता हूँ।
2: सर, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ?
1: हाँ आरव, बोलो।
2: सर, कल आपने मुझे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ नाराज हैं।
1: मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत और नियमितता की जरूरत है।
2: तो आप मुझसे नाराज नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं बेटा। एक शिक्षक का काम केवल ये कहना नहीं है कि गलती मत करो। हमारा काम ये भी है कि जब तुम गलती करो तो तुम्हें ये बताएं कि उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ, कभी कभी मुझे सख्त होना पड़ता है, लेकिन मेरी सख्ती का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाना है।
2: सर, अब मैं समझ गया। मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना काम समय पर करूं।
1: बस यही तो मैं चाहता हूं। और हाँ, अगली बार अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो बिल्कुल खामोश मत रहना, मुझसे बात करना।
2: जी सर।
1: और याद रखना, गलती करने वाला बच्चा बुरा बच्चा नहीं होता।
2: जी सर, गलती से सीखना भी तो जरूरी है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: तो दोस्तों, आपने सुना, कभी कभी शिक्षक की डांट के पीछे चिंता होती है और बच्चे की चुप्पी के पीछे भी कई भावनाएं हो सकती हैं। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की तरफ से थोड़ा सा प्रयास जरूरी है। श्रोताओं, शिक्षक अनुशासन रखें, लेकिन बच्चे की भावनाओं को भी समझें, और बच्चे शिक्षक का सम्मान करें, लेकिन अपनी बात कहने से डरे नहीं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक ही तरफ है, बच्चे के अच्छे भविष्य की तरफ। श्रोताओं, अब बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते में माता पिता की भूमिका भी बहुत महत्व रखती है। अगर बच्चा स्कूल से आकर कहता है कि आज

मैडम ने मुझे डांटा, या फिर आज मैडम ने मुझे बहुत गुस्सा किया, या आज सर ने मेरे साथ ऐसा कहा, तो तुरंत यह तय करने की जरूरत नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। पहले बच्चे की बात शांति से सुनिए, उससे पूछिए तुम्हें कैसा लगा, उसके बाद स्थिति को समझिए और जरूरत हो तो शिक्षक से भी शांतिपूर्वक बात कीजिए, क्योंकि बच्चे को ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी और शिक्षक को भी ये महसूस होना चाहिए कि माता पिता मेरे विरोध में नहीं, बच्चे के हित में मेरे साथ बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आखिर हम सभी एक उद्देश्य के ही हैं, बच्चा पढ़े भी, सीखे भी, खुश रहे और एक अच्छा इंसान भी बने। जी हाँ, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अनुशासन। जी हाँ, देखिए बच्चों को केवल प्यार देना भी पर्याप्त नहीं है और केवल सख्ती करना भी नहीं, बच्चों को चाहिए प्यार भी, सीमाएं भी, स्वतंत्रता भी और जिम्मेदारी भी। जी हाँ श्रोता, उन्हें ये पता होना चाहिए कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलती से सीखना जरूरी है। उन्हें सवाल पूछने की आजादी हो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भी आना चाहिए। उन्हें अपने सपने देखने की आजादी हो, लेकिन मेहनत और अनुशासन का महत्व भी बच्चे को समझना चाहिए और यही संतुलन एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे परिवार की पहचान बन सकता है। श्रोताओं, ये नीति वचन है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे और वो और भी बुद्धिमान होगा, है ना श्रोताओं? कितनी सुंदर बात है ना। इसका मतलब है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, यही एक अच्छे शिक्षक की खूबसूरती है। वो जो सिखाता है उसे अपने जीवन में जीने की कोशिश भी करता है और विद्यार्थियों के लिए भी संदेश है, अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए, अगर कोई बात समझ में ना आए तो सवाल पूछिए। श्रोताओं, अब एक पल के लिए अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए जरा। जी हाँ, थोड़ी देर रुक जाइए, शांत हो जाइए और थोड़ी देर अपने स्कूल के उन दिनों को याद कीजिए। क्या आपको कोई ऐसा शिक्षक याद आ रहा है जिसने आपको कभी कहा हो, कभी इनकरेज किया हो या कभी डांटा हो और कहा हो तुम कर सकते हो, या फिर शायद कोई ऐसा शिक्षक जिसने आपकी गलती पर आपको डांट लगाई हो, या फिर उस समय शायद आपको बहुत बुरा लगा हो उस डांट का, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है शायद उस डांट की जरूरत थी। और हो सकता है कि किसी शिक्षक की कोई छोटी सी तारीफ आज भी आपको याद आती हो। श्रोताओं, यही शिक्षक की ताकत है, उनकी कही हुई बातें हमारे साथ स्कूल से बाहर भी चली आती हैं, है ना? श्रोताओं, इसी पर एक छोटी सी चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चुनौती ये है, आज अपने जीवन के किसी एक शिक्षक को याद कीजिए। जरूरी नहीं कि वो आपके वर्तमान शिक्षक हो, कोई पुराने शिक्षक, कोई कॉलेज के प्रोफेसर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिखाया हो, उन्हें फोन कीजिए। जी हाँ, फोन उठाइए, उन्हें फोन कीजिए या एक छोटा सा संदेश भेजिए, या सिर्फ ये मत लिखिए हैप्पी टीचर्स डे श्रोताओं, बल्कि ये भी लिखिए कि आपने मेरे जीवन में क्या बदलाव किया। हो सकता है आपका एक छोटा सा संदेश उनके लिए पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। आशा।

तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि शिक्षक दिवस केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक सम्मान का दिन है। उन दिनों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें पढ़ाया, समझाया, कभी डांटा, कभी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। लेकिन आज का संदेश सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी, क्योंकि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षक का ज्ञान, माता पिता का सहयोग और बच्चे की मेहनत तीनों जरूरी है। और शायद आज की पूरी बात को हम कुछ शब्दों में कह सकते हैं, और वो ऐसे, बच्चों को इतना डराकर मत सिखाइए कि वह सवाल पूछना ही भूल जाए, और इतना भी छोड़ मत दीजिए

0: कि अनुशासन भूल जाए। उसे प्यार, समझ और सही दिशा तीनों की जरूरत है, क्योंकि डांट में भी सुधार हो, अनुशासन में भी सम्मान हो, शिक्षा में भी संवेदनशीलता हो और हर बच्चे को यह एहसास हो, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। श्रोताओं, यही तो शिक्षा की असली खूबसूरती है, जहाँ ज्ञान के साथ इंसानियत भी सीखी जाती है। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक और हमारा फोन नंबर है
1: 9414066730। जी हाँ, 9414

0: 3 0 जी हाँ 9414066730।
1: तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।

0: हमारी बहनें प्रायोजित कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी 500 रुपए में ही चैनल है। 6:30 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर के अंदर से। यहां से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, इसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनना चाहेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान कल। 162 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा। चिप से लेकर शिप निर्माण तक आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना का ड्रोन थॉन 2026 14 सितंबर से होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 162 निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं। 4 नगर परिषदों की 6 वार्ड और 1 नगर निगम के 1 वार्ड में सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा नगर निगमों में मतदान होगा। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और नागौर सहित अन्य नगर परिषदों में भी मतदान होगा। जयपुर जिले में पहले चरण के तहत 18 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए कुल 565 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 20,600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जो 5,393 वार्डों में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं करीब 57,50,000 मतदाता पंजीकृत हैं। इस चरण के तहत कुल 7,600 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बीच मतदान दल पोलिंग बूथ पर पहुंचकर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। मतदान के लिए संबंधित क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। कल होने वाले मतदान को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 11 सितम्बर को होगा। इसके लिए रोड शो का सिलसिला जारी है। साथ ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। इस बीच स्वीप गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा लोगों से लोकतांत्रिक पर्व में भाग लेने का आग्रह किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड की जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।
2: कल 9 तारीख को 5 नगरीय निकायों में कल चुनाव है। कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, बानसूर और नारायणपुर, इन 5 अर्बन बॉडीज के मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि कल के दिन सुबह 7 बजे से चुनाव मतदान शुरू हो जाएगा, तो आप सब शत प्रतिशत अपना मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए जरूर अपने पोलिंग बूथ पर उपस्थित रहे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में इस दशक में तेजी से हुए काम ने इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज वडोदरा से विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंड देश को समर्पित किए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान समय में फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार का मुख्य आधार बन रहे हैं।
3: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रिको फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

0: विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ही संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
0: अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये सातवां संस्करण है। ये नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ ही निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के लिए साझा मंच है। जीएफएफ में एआई, प्रोग्रेमेबल फाइनेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 3 राज्यों में आईटीआई क्लस्टरों के लिए रणनीतिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनकी लागत 735 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए की निवेश योजना शामिल है। इसे प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु की 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार इन स्वीकृतियों के साथ ही पीएम सेतु के तहत अब 9 आईटीआई क्लस्टरों में कुल स्वीकृत निवेश 2171 करोड़ रुपए हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आज जयपुर में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक ली। उन्होंने जल नल मित्रों के प्रशिक्षण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पूरी हो चुकी ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं को स्थानीय समुदायों को सौंपने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विधिवत हस्तांतरण से स्थानीय लोगों में योजनाओं के प्रति स्वामित्व और सहभागिता की भावना मजबूत होगी। भीलवाड़ा जिले में जर्जर विद्यालय भवनों और क्लासरूम के नए निर्माण कार्यों के लिए 126 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से ये मंजूरी दी गई है। इसके तहत जिले में 116 जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त किए जाने के बाद नए सिरे से बनाया जाएगा। इसी तरह राजसमंद जिले में भी डीएमएफटी मद से 11 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए विद्यालय भवन बनाए जाएंगे। वहीं 83 सरकारी स्कूलों में क्लासरूम और नए शौचालयों का निर्माण होगा। रूम थॉन 2026 का आयोजन 14 सितंबर से जैसलमेर के पोखरण रेंज में किया जाएगा। ये भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित किया जाने वाला प्रमुख रक्षा और तकनीकी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 3 दिन के इस कार्यक्रम में ड्रोन से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लाइव और स्टैटिक प्रदर्शन किए जाएंगे। आमिर महल इलाके में कल हुई चाकूबाजी की घटना में घायल टूरिस्ट गाइड की आज एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आमिर थानाधिकारी राजेंद्र गुदारा ने बताया कि इसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और स्थानीय नागरिकों ने बाजार तथा दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। थानाधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार पर्यटकों को लेकर एक जीप चालक और टूरिस्ट गाइड के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद चालक ने गाइड पर हमला कर दिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर साल 8 सितंबर का ये दिन लोगों को विकास का आधार शिक्षा को मानने की प्रेरणा देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दुनिया में वयस्क साक्षरता दर 88% तक पहुंच चुकी है, किंतु फिर भी करीब 7.5 करोड़ लोगों का निरक्षर रहना ये बताता है कि साक्षरता की यात्रा अभी भी अधूरी है। भारत में 7 साल और उससे अधिक आयु की साक्षरता दर करीब 81% होना

0: महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि राज्य और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर अभी भी बना हुआ है। आज साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं तथा सोशल मीडिया के दौर में सूचना साक्षरता का महत्व तेजी से बढ़ा है। AI के विस्तार में इसने नया आयाम जोड़ दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रोगियों की शारीरिक क्षमता और गतिशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। जयपुर की फिजियोथेरेपिस्ट नुमान ने बताया कि ये दर्द को कम करने के साथ ही कार्यक्षमता को बहाल करने में भी महत्वपूर्ण है।
2: फिजियोथेरेपी केवल चोट और सर्जरी से उबारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुराने दर्द को कम करने और शारीरिक क्षमता में सुधार लाने में भी मदद करती है। साथ ही दिल की सेहत को सुरक्षित रखने और स्ट्रोक के बाद की रिकवरी में भी अहम भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी खाली चोट लगने और हड्डी टूटने के बाद ही नहीं करवाई जाती, बल्कि मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की समस्या, कमर और गर्दन के दर्द में भी काफी राहत देती है।
1: बाड़मेर में कल रेलवे शहीद मेला आयोजित किया जाएगा। गडरा रोड स्थित शहीद स्मारक पर ये मेला भरेगा। इसमें शहीदों के परिजन और रेलवे अधिकारी तथा कर्मचारी जुटेंगे। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गडरा रोड और गागरिया रेलवे स्टेशनों के बीच 17 रेलकर्मी शहीद हुए थे। उनकी याद में हर साल रेलवे शहीद मेला लगाया जाता है। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स के नए पर्यटन सीजन का पहला फेरा कल से शुरू होने जा रहा है। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव शुची त्यागी ने बताया कि नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शाही रेलगाड़ी रवाना होगी। पहले टूर में 77 मेहमान सफर करेंगे। उन्होंने बताया कि नए सीजन में ट्रेन के शुरुआती 4 टूर फुल हो चुके हैं। ट्रेन के दोनों रेस्टरों को भी नए रूप में तैयार किया गया है। नए बदलावों के साथ ये रेलगाड़ी राजस्थान की शाही विरासत को पेश करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान कल। 162 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा। चिप से लेकर शिप निर्माण तक आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। और जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना का ड्रोन थॉन 2026 14 सितंबर से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख समाचार एकांश ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बनी हुई हैं। दो चरणों में होने जा रहे मतदान के पहले चरण में कल नोखा, देशनोक और श्री डूंगरगढ़, खाजूवाला, लूणकरणसर तथा नापासर नगर पालिकाओं में वोट डाले जाएंगे। वहीं बीकानेर नगर निगम में 11 सितंबर को मतदान होगा। कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आज मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण के साथ मतदान केंद्रों की ओर रवानगी की गई। नापासर के वार्ड 20 और 24 तथा बीकानेर नगर निगम के वार्ड 69 में निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं। ईवीएम के जरिए होने वाले मतदान के लिए 689 बैलेट यूनिट और 682 कंट्रोल यूनिट आवंटित की गई हैं। वहीं 137 बैलेट यूनिट और 144 कंट्रोल यूनिट आरक्षित रखी गई हैं। जिले में शत प्रतिशत मतदान को लेकर चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत पिछले दिनों कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जागरूकता रैली, निबंध, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताओं के साथ नवाचारों के जरिए लोगों को मतदान का संदेश दिया गया। देवीकुंड सागर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जहां स्काउट गाइड को मतदान का कर्तव्य याद दिलाया गया। इसी कड़ी में कई शिक्षण संस्थाओं और संगठनों में भी संवाद कार्यक्रम रखा गया। कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट में युवा मतदाता संवाद आयोजित हुआ। इसी तरह सार्वजनिक पुस्तकालय और डूंगर कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय की भी लोकतंत्र के

0: अरबों में सहभागिता के लिए उनके साथ भी संवाद किया गया। जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सिटी गैस समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने गैस नेट प्रतिनिधि को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गैस वितरण व्यवस्था में सुधार और अवैध खनन पर कार्रवाई के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी तरह खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने खनन क्षेत्रों में पौधरोपण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर नाराजगी जताते हुए गजनेर अभयारण्य की सीमा निर्धारण नहीं होने से आ रही कठिनाइयों पर अधिकारियों से चर्चा की। जिले में मॉनसून के आगमन के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने को लेकर जिलेवासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत मां यशोदा के नाम से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सचिव हेमंत गेरा और जिला कलेक्टर निशांत जैन तथा मुख्य वन संरक्षक आरके खेरवा ने भी पौधे लगाकर जागरूकता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर बताया कि कतरिया सर में 110 बीघा क्षेत्र में 5 हरित चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत मरुधरा संजीवनी पार्क, थार हरित क्षेत्र, मरु चिंकारा चारागाह, प्रकृति संवर्धन चारागाह और जैव विविधता धाम के काम शामिल हैं। 77वां जिला स्तरीय वन महोत्सव बीचवाल मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने नाटक और लोक नृत्य से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आजादी की वर्षगांठ जिले भर में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस बार बीकानेर जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और यूपीआई पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के लगभग 1200 बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। जिले भर में इस बार मॉनसून की बारिश में उतार चढ़ाव बना रहा। वर्षा की गतिविधियों में कमी के चलते जलाशय अभी तक नहीं भर पाए हैं। वहीं खेतों में खरीफ की फसल पर भी असर पड़ा है। किसान अब भी मॉनसून में अच्छे बारिश की आस लगाए बैठे हैं। बीकानेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर और पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। नगरीय निकाय चुनाव रा पहला दौर माय काल 162 निकाय माय समारे 7 बजे वोट पड़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र रा तौर हम सामने आयो। चिप शिप बनावन ताई खुद रह पान वो भ्रमण री नवी गाथा लिखते हो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हर घर जल प्रमाणीकरण री प्रक्रिया तेज करण रा हुकम दीना। हर जैसलमेर री पोखरण रेंज माए 14 सितंबर भारतीय वायुसेना री ओर ड्रोन फॉन 2026 रखियो जावेला। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश माए नगरीय चुनाव रा पहला दौर राते अतकाल समारे 7 सिंचन 6 बजे ताई वोट पड़ेला। निकाय चुनाव रा ई पहला दौर माई 162 निकाय माई वोट डालिया जावेला। ई बीचे 4 नगर परिषद रा 6 वार्ड और 1 नगर निगम रा 1 वार्ड माई सदस्य सगड़ा ने 1 राय चुनी चिया है। काल अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा नगर निगम सागे बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और नागौर समेत नेरी नेरी नगर परिषद माए चुनाव सारू वोट पड़ेला। चुनाव रा पहला दौर माए जयपुर जिला रा 18 नगरीय निकाय माए वोट पड़ेला। ये सारू 565 मतदान केंद्र बनाई चिया है। पहला चरण रा चुनाव माए 5,393 वार्ड माए 20,692 उम्मीदवार भाग आजमाया है। आ वार्ड माए करीब 57,50,000 मतदाता वोट दे सकेला। यहां सारू 7,692 मतदान केंद्र बने।

0: इदिचे पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पूगर जरूरी व्यवस्थावां कर रही है। काल पड़वा वाला वोटन सारू उम्मीदवार मारा हिमायतियां सागे पूरा उमाऊ घर घर जार माने वोट देवन रियरज कर रहा है। काल चुनाव वाला हल्का माए वोट देवन सारू बिना तनख्वाह कटिया छुट्टी रो ऐलान करीचियो है। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रातेत 11 सितंबर में वोट पड़ेला। इन सारू रोड शो रो सिलसिलो चल रियो है। प्रचार काल सिंजा ताई चलेला। वोटा की गिनती 14 सितंबर में करी जावेला। इन बीचे स्वीप कार्यक्रम जरिए वोट जरूर देवन रियरज करी जा रही है। कोटपुतली बहरोड भी जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता जनताओं स्थानीय निकाय चुनाव में वोट जरूर देवन री अरज कीनी है।
1: कल 9 तारीख को 5 नगरीय निकायों में कल चुनाव है। कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, बानसूर और नारायणपुर, इन पांचों अर्बन बॉडीज के मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि कल के दिन सुबह 7 बजे से चुनाव मतदान शुरू हो जाएगा, तो आप सब शत प्रतिशत अपना मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए जरूर अपने पोलिंग बूथ पर उपस्थित रहे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत रा परिवहन और लॉजिस्टिक्स हल्का माए लारना 10 साल माए तेजी उभिया काम हो ये हल्का रो काया पलट फेंक्यो है। वह आज गुजरात रा वडोदरा माए राखी जा कार्यक्रम रे दौरान खास माल ढुलाई गलियारा रा 3 विशेष खंड देश ने सौंपया। इस मौके श्री मोदी कहो कि मौजूदा दौर माए फ्रेट कॉरिडोर देश माए कारोबार रे खास बुनियाद बन रहा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री कहो कि भारत विश्व स्तर रा विनिर्माण केंद्र रा तौर में सामने आ रही है। वह कहो कि देश में आई पूरी खुदरेपाण उभी आपूर्ति श्रृंखला तैयार करी जा रही है।
2: अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और पूरक भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: प्रधानमंत्री रो आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 रो उद्घाटन करण सागे जनसभा में संबोधित करण रो कार्यक्रम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट रो 7वां संस्करण है। जीएफएफ में एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु री 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति री मीटिंग में राजस्थान समेत 3 राज्यों में आईटीआई क्लस्टर सारू रणनीतिक निवेश जुड़ी योजनाओं ने मंजूरी दी रही है। आमाथे 735 करोड़ रुपए भत्तो खर्चा वेला। राजस्थान में जुड़ी योजनाओं सारू 241 करोड़ रुपया राखी चिया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय रमजब ई मंजूरी सा गई पीएम सेतु रातेत अब 9 आईटीआई क्लस्टर सारू मंजूर करी जिया कुल निवेश री रकम 2171 करोड़ रुपया फेंकी है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हर घर जल प्रमाणीकरण री प्रक्रिया तेज करण रा हुक्म दीना है। वे आज जयपुर माए राज्य जल और स्वच्छता मिशन री अपेक्स कमेटी री मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव जल नल मित्रण री सिखावण टीम सर पूरी करण रा हुक्म ये दीना। वे गांवाई हलका माए नल रे जरिए पानी पुगावण री पूरी भे चुकी परियोजनावां ने वठेरा लोगां ने सौंपण बाबते कहो। भीलवाड़ा जिला में खस्ता हाल स्कूल भवना और क्लासा में नुआ बनावन सारू 126 करोड़ रुपए मंजूर करी चिया है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट री ओर मंजूर करी ची इन रकमों जिला में 116 खस्ता हाल स्कूल भवन ढहार पाछा बनाया जावेला। राजसमंद जिला में आई डीएमएफटी मेदों 11 करोड़ रुपए रा खर्चों 8 नवी स्कूल बनाई जावेला। 83 सरकारी स्कूलों में नुआ क्लासरूम और शौचालय बनाया जावेला।

0: जैसलमेर जिलारी पोखरण रेंज में 14 सितंबर ड्रोनथॉन 2026 राख्यो जावेला वो भारतीय वायुसेना री ओर नु राख्यो जावन वालो खास रक्षा और तकनीकी कार्यक्रम है। इनरो मकसद देश में विकसित करी जी ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियां रा असर री जांच करनो है। रक्षा मंत्रालय रे मुजब 3 दिन रा ई कार्यक्रम में ड्रोन जुड़िया कई हल्का न बारा में लाइव और स्टेटिक प्रदर्शन करया जावेला। जयपुर रा आमेर महल हल्का में काल हुई चाकूबाजी री वारदात में जख्मी हुआ टूरिस्ट गाइड री आज सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज रे दौरान मौत हुई की। हाल ताई मिली जानकारी रे मुजब सैलानियों ने लेर जा रहा जीप ड्राइवर और टूरिस्ट गाइड बीचे हुआ झगड़ा रे दौरान जीप चलावन वालों गाइड माथे हमलों कर दिनो हो। आमेर रा थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा बतायो कि आरोपित ने पकड़ और मामले री जांच करी जा रही है। एहतियात तौर हल्का माए पुलिस रो और जाब्तो लगाई चियो है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर साल 8 सितंबर ने ओ दिन लोगों ने विकास री बुनियाद भणाई लिखाई न मानबारी सीख देवे है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दुनिया में वयस्क लोगा रे साक्षर विवरण री रेट 88% ताई पूग गई है, पर फिर ही करीब 7.5 करोड़ लोगा रे अक्षर ज्ञान बिना रेवण बतावे कि अक्षर ज्ञान रो सफर हाल ई अधूरो है। भारत में 7 साल और इणु 32 उम्र रा लोगा री अक्षर ज्ञान री रेट करीब 81% वेवणो मोटी उपलब्धि है। आज साक्षरता केवल आखर ज्ञान ताई सिमट्योड़ी कोनी है, बल्कि बैंकिंग डिजिटल चुकारा और ऑनलाइन सेवावा और सोशल मीडिया रा दौर माए सूचना साक्षरता रो महत्व तेजी बढ़ियो है। एआई आ जावणु ई माए नुवो आयाम जुड़ गयो है। समाचार कक्षो सालेहा गाजी।
0: आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य हलकाउं जुड़ियो खास हिस्सो है जो मरीजाना शरीर रा बूता और हलचल बनाया राखण माए मदद करे है। जयपुर माए कसरत करावन वाला फिजियोथेरेपिस्ट नोमान बतायो कि फिजियोथेरेपी दर्द कम करण सागे काम करण रोबूतो ओजू हासिल करण माई खास है।
2: फिजियोथेरेपी केवल चोट और सर्जरी से उबारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुराने दर्द को कम करने और शारीरिक क्षमता में सुधार लाने में भी मदद करती है। साथ ही ये दिल की सेहत को सुरक्षित रखने और स्ट्रोक के बाद की रिकवरी में भी अहम भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी खाली चोट लगने और हड्डी टूटने के बाद ही नहीं करवाई जाती, बल्कि मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की समस्या, कमर और गर्दन के दर्द में भी काफी राहत देती है।
0: बाड़मेर जिला में गडरा रोड रा शहीद स्मारक माथे काल रेलवे शहीद मेलो भरेला। ई मौके रेलवे रा शहीद व्या बहादुर कर्मचारियों रा बलिदान न याद करियो जावेला। ध्यान जोग है कि साल 1965 में पाकिस्तान रे खिलाफ लड़ाई रे दौरान गडरा रोड और गागरिया रेलवे स्टेशन बीच शहीद हुआ 17 रेल कर्मचारियों री याद में हर साल 9 सितंबर ने रेलवे शहीद मेलो भरे है। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स नुआ पर्यटन सीजन में पहली दफा काल नई दिल्ली रा सफदरजंग रेलवे स्टेशन रवाना फैला। पर्यटन विभाग री प्रमुख सचिव शुची त्यागी बतायो कि पहला फेरा माए 77 मेहमान सफर करेला। वे बतायो कि नुवा सीजन माए रेल रा शुरुआती 4 टूर माए सगली सीटा भर की है। रेल रा दोनों रेस्तरा नई नुव रूप दियो चियो है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह अब सिर्फ दिल्ली माए करावन री बजाय देश रा न्यारा न्यारा हल्का माए करायो जावेला। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रे मुजब नई व्यवस्था री शुरुआत 72वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह रे 22 सितंबर ने गुजरात रा एकता नगर में राखर करी जा रही है। आर्टिकल 370 ने सब बेहतर फीचर फिल्म रा इनाम नवाजी जावेला। भंगार बेस्ट नॉन फीचर फिल्म चुनी ची है। कार्तिक आर्यन ने बेहतरीन एक्टर और यामी गौतम ने बेहतरीन अभिनेत्री रो इनाम देर नवाजा जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ए इनाम देवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला इन कार्यक्रम रे 138वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 25 सितंबर

0: पर तई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। नगरीय निकाय चुनाव रा पहला दौर माय काल 162 निकाया माय सवेरे 7 बजाऊ वोट पड़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र रा तौर उसामी आयो। चिपशिप बनावण ताई खुद रे पान उबो भेवण दी नुवी गाथा लिखियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हर घर जल प्रमाणीकरण री प्रक्रिया तेज करण रा हुकम दीना। और जैसलमेर री पोखरण रेंज माय 14 सितंबर भारतीय वायुसेना री ओर ड्रोनथॉन 2026 रखियो जावेला। निसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। शाम के 7 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: कोई डर नहीं।
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: मैली धोती खुली छकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। वे टूटिया छप्पर में भी हो वे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगड़ा श्रोताओं ने, काश्तकार भाई बहना ने, चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम। और सगड़ा बड़ा बूढ़ा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मौसी, बहन भाईली बुआ, सब ने ढो करे जैसा। नरपत भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
8: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम।
7: और आज से नरपत भाई मैं बछवारस ची गाय पूजवा गया, गाय बछड़ा की पूजा हो गई है। एक अजीब सी बात मैं देखी, मन तो यहाँ लागे की पूजवा ही क्यों आया आपा।
8: क्यों?
7: जो गाय थी और बिल्कुल नानो सो बाछड़ो छो, अब लुगाया सुवारे 4 बजा सो, जो ग्वालन छी बा बता रही की 4 बजा सो लुगाया पूजवा आ रही है। और 4 बजा सो गाय पर भी बाछा पर दूध और दही पानी मेहंदी जाने काई काई पटक रहे, बाछड़ो या कांप रहे हो। तो मैं गई तो मैं बोली यहाँ सबने खैरी खैबा ने तो नाट रही की भाई बहुत छीटा ही मार दो, बहुत पानी या दही मत पटको, इन्हें ठंड लाग रही है। पानी लुगाया तो लुगाया है, माने ही को नहीं। मने लागे अशी पूजा काई काम की जो प्राणी ने दुख देवे। इसे तो आप घर ही कहानी सुन लेता और थोड़ा सो चारों बाने गाल देता तो ही चोको चो।
8: बिल्कुल सही बताया कि आपने वहां की पूजा करा तो आप घर भी पूजा कर सका था, क्योंकि आपने जो मान्यता रही की देवी देवता की भगवान कृष्ण ने भी एक गाय बछड़ा भोजा था अत्यधिक प्रेम था, इसलिए आप व्रत बारह से आप मनावे था, जिसके कारण आपने जरूरी थोड़ी कि आपने जानवर ने परेशान करा। एक नाम से ही श्रद्धा में अपने दिल में होना चाहिए कि आज आप बच बारस की पूजा कर रहा था, तो एक मन में ही सोचो जाए कि आप एक अपना बछड़ा की आप पूजा कर लिया थी, होना चाहिए थे, बताइए जी साहब।
7: बिल्कुल। और इको एक दूसरो नाम बच बारस तो आप अपनी भाषा में देसी में बोला, इन्हें वत्स बारस भी कहते, वत्स यानी टाबर। और इमें ना जो फुदोकड़ो खिलावे यानी दही जो है गूठी सु खिलावे है चांदी की, और टाबर

0: गोदी में बिठार खिलावे है। तो टाबर पड़ा में तो चोखो लागे ही लागे, मारे तो जो मार माता जी है अबार भी माने भाई बहना ने बैठार खुआवे है और बड़े चोखो लागे है, वो जो स्नेह है ना चोखो लागे। और इको एक महत्व जो मैंने समझ में आवे नरपत भाई कि हमेशा सोई कोई भी रीति रिवाज अपना रहा है पुराना पुरखा जो चलाता है मी के पीछे एक कारण रहो है और बड़ो उद्देश्य। आप देखा कि गाय की बाछिया वह है तो बाने तो भाई आगे जार गाय बना ली खूब सार संभाल करे है, पर जो बछड़ो हो वह भी की पत्ती सार संभाल को नहीं करे। लोग यहाँ सोचे है एक टेम के बाद कि वो तो कोरो चारो खा रहे हो कहीं काम है, और आज का दौर में तो जट है जो खेती है वह भी मशीना सु होवा लग गई तो और बुरी स्थिति है। अच्छी स्थिति में गाय के सागे बछड़ा की पूजा करवा को महत्व यही है कि जितनी बछिया महत्वपूर्ण है बत्ती बछड़ो भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही बताया, क्योंकि बार ई टाइम में जो आपने गाय छे बने अगर आप बहुत सारा लोग है दूध की टाइम में तो वन बांध ले टाइम में वन छोड़ दे तो वह रोड़ा पर सड़का पर और गले में घूमती रह तो आपको केवल मतलब जो और या बा बछड़ी छे तो बिन तो ये लग लो भी आगे या बड्डी उले अपन दूध दूध देगी, लेकिन बछड़न तो मैं आप बता रहे जो सही थे कि इन्हें फिर इन्हें ये छोड़ दीजिए कि मतलब जो आभार तो आप पूजा करे था पूजा के टाइम तो आप ढूंढ रहे था लेकिन जब आपने की जरूरत को नहीं तो आप अभी नहीं छोड़ दे।
0: तो आपनों जो काश्तकार है जिन्हें पतो है अपना ढांडा ढोर को महत्व वो तो इन्हें समझे ही है, पर आम नागरिक भी समझे कि जो जीव है वे कोई से भी पशु भी ने भी उदारता की जरूरत है प्रेम की जरूरत है सार संभाल की जरूरत है। जैया कार्यक्रम में आपने बाता चीता और जानकारियां की जरूरत रहे है।
1: बिल्कुल,
0: तो अब जानकारी की तरफ चला आप है ना, और पहले एक संदेश सुन लिया।
1: बिल्कुल सुनो सर।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहा
2: है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बात सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: श्रोता आज अपने साथ स्टूडियो में से हैं डॉक्टर राजेश विश्नोई, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा, और आज आप यहाँ से बात कर ला उन्नत भेड़ पालन में मूल्य श्रृंखला की भूमिका के बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है, राम राम सा।
6: सगला किसान भाइयों ने और पशुपालक बहनों ने मेरी तरफ हूँ सब ने राम राम सा।
5: यह कि आज आपने बात को विशेष है डॉक्टर साहब उन्नत भेड़ पालन में मूल्य श्रृंखला की भूमिका, सबसे पहले आपसे यही जानबो चावल हाँ कि यह जो मूल्य श्रृंखला हो वह या काई हो वह इको मतलब काई हो वह बताओ सा।
6: तो वो मैडम मूल्य श्रृंखला जो की है यदि थाने सरल शब्द में जो किसाना की भाषा में यदि बताना चाहूँ तो मतलब भेड़ के बच्चे यानी जन्म लेर बिना उत्पाद जिया ऊन दूध मांस ये जगह आप अंतिम जगह उपभोक्ता है बी तक जगह पहुंचने की जगह पूरी यात्रा है
5: जी।
6: इन आपा जो है मूल्य श्रृंखला का वहाँ और इन यात्रा में क्या है कि हर कदम पर उत्पाद की कीमत और भी गुणवत्ता भी जकी है बढ़ है तो इन्हें जो है मूल्य श्रृंखला प्रबंधन और कर। यदि मैं थाने एक उदाहरण देर बताऊं तो एक यदि भेड़ पालक कोई भेड़ ऊन कतर बिना हित स्थानीय व्यापारी को बेच दे तो वो मूल्य श्रृंखला कौन जुड़ो रो क्यों, क्योंकि बन सीधो ही जो को है बिना ऊन की ग्रेडिंग करिए बिना बिंगी साफ सफाई करिए बिना बिंगे प्रोसेसिंग करिए बिना बिना जो को है सीधो बेच दियो, लेकिन यदि वो भी ऊन की कटाई करे बिंगी छंटाई करे बिना साफ करे और जो की धागा या कंबल बनाने वाली कंपनियां है वहां तक यदि वो बने पहुंचावे तो बिंगो हर स्तर तक बिंगो मुनाफा बढ़ी तो इन्हें यहाँ पर कहवा वैल्यू चैन और वैल्यू चैन श्रृंखला मूल्य श्रृंखला।
5: कहवा को मतलब यह है भाई, हर चीज की शुरुआत से ले जब तक सामान बन तैयार हो उनकी कड़ी सु कड़ी जुड़ेड़ी
6: जी, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल
5: वासा। तो या तो यो मूल्य श्रृंखला को मतलब अब आप सुनी का महत्व का बारे में जानबो चाहवला भाई, अपना जो भेड़ पालक छे वे ई मूल्य श्रृंखला ने की कर उपयोग कर

0: आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उनको और भी ज्यादा जो मूल्य चाहिए उन्हें बढ़ा सके।
1: देखो मूल्य श्रृंखला जो की है वह भेड़ पालन में बहुत महत्वपूर्ण, और मैं तो कहूँ चाहे किसो भी आपा धंधो करा किसो भी व्यवसाय करा मूल्य श्रृंखला को जानना अपने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका कई लाभ है। पहला तो लाभ वो है कि जो किसान और पशुपालक भाई बहन है वे आपकी उत्पादन लागत में जो की है वे नियंत्रित कर सके। दूसरा लाभ है कि जगह उत्पाद आवे बंग यहाँ पर गुणवत्ता बढ़ा सका। तीसरो है कि यहाँ पे जगह बिचौलिया जगह रहे वहाँ पर आप निर्भरता कम करी जा सके मूल्य श्रृंखला की जानकारियों। और चौथो है किसान की यदि जो बाजार की मांग और कीमता की जानकारी मूल्य श्रृंखला के माध्यम में किसान ने मिल सके, और कच्चा जगह उत्पाद है बंग मूल्य संवर्धित कर और या बंगी प्रोसेसिंग कर बाऊ जो को है किसान भाई और पशुपालक अलग अपनी आय जो की है वे और बढ़ा सके। और इनमें यदि भेड़ पालन की मैं बात करूं तो इन मूल्य श्रृंखला में कई चरण है, जहाँ भेड़ की पहला अच्छी नस्ल को वहाँ पर चयन करा बिंग बाद बिंगो प्रजनन किया हो रहा है बिंगो पोषण किया है बिंगो स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी अपन रखनी है, मेमना का जगह पालन है ऊन मांस और भी जगह जिया भेड़ में पांच सितारा पशु गए जगह बिना पांचों उत्पाद है बे प्लस आप पशु की बिक्री किन्ने कर लिया ऊन की आप प्रोसेसिंग मांस की प्रोसेसिंग और इनमें ट्रांसपोर्ट विपणन और अंत में जगह उपभोक्ता उत्पादक पहुंचे सब जत्ता इनके माई जगह जगह रोल और जगह अदा करे बांगी जानकारी है। यानी मतलब मेरे कहने का मतलब है उत्पादन करना ही कोई नजर काम को नहीं, लेकिन बिना सही तरीके हूँ बाजार तक पहुँचाना और सही भाव में सही कस्टमर ने गुणवत्ता के साथ देना वो मूल्य श्रृंखला को मेन महत्व है।
0: डॉक्टर साहब आप अबार बात कर रहे थे आपने जो ऊन की और मांस की भेड़ा के मायने, तो आपने जो पशुपालक भाई है जो कि भेड़ ने पाले है वे भी ऊन और जो मांस है उनकी जो गुणवत्ता है उन्हें की तरीका से ज्यादा और बेहतर बढ़ावे ताकि बाजार में जब ये दोनों ही चीजा ने ले जावे तो वाना उनकी जो मूल्य है वो चोखू मिले और आमदनी अच्छी हो गए, पशुपालक की आमदनी अच्छी थे तो आर्थिक स्थिति अपने आप ही मजबूत है।
1: बिल्कुल सही बात की थे, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी वे विकसित भारत 2047 की यहाँ पर बात आप सामने एक लक्ष्य रखियो है
0: जी।
1: और विकसित भारत जब तक आप छोटा और लघु और सीमांत किसान ने साथ में ले नहीं चाला जिन बिना अचीव करना आप खतर मुश्किल हो सके। तो भी मैं जगह मेन जगह आप लघु और सीमांत किसान है वो मेजर धंधो ही जगह और मेजरली यदि बात करूं शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया की तो भेड़ पालन ही बांगो आजीविका को मुख्य साधन है।
0: सही बात।
1: और भेड़ पालन को यदि उत्पाद की बात करा तो ऊन और मांस ये दोनों मुख्य उत्पाद है। तो राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो भेड़ पालन में जो को है ऊन बेहतर लाभ प्राप्त करने खातर ऊन की मात्रा नहीं लेकिन उनकी गुणवत्ता भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और समय पर और भी वैज्ञानिक तरीके ऊन की कटाई करो। आप का नहीं यहाँ कैंचियों किसान लोग काटे जबकि शीरिंग वे मशीना आ रही है ऊन की कटाई की, मशीना को प्रभाव लो जगह ऊन को रेशो जो को है वो कैंचियों काटियों छोटो रह जाए और भी गुणवत्ता गिर जाए। तो आधुनिक जगह कटाई की कतरन मशीन आउड़ी है बांगो किसानों ने ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना क्योंकि भी उनको कहेगी बांगो श्रम भी कम लगे और उनकी लंबाई भी अच्छी मिले। बिंग बाद सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करो थे ऊन उतार दी बिंग बाद सफेद ऊन कोई पूरी ऊन गंदी ऊन मान अलग अलग कर लो सबने और अलग अलग ग्रेड के ऊन की कीमत बाजार में और बेहतर बाद में अलग अलग मिले। बिंग बाद सफाई करो ऊन में धो सुखाए सही तरीके गांठा बनाए पैक करो। और कई किसानों मारी जब बात हुआ है वे ये कि सब मैं अकेलो क्या कर सकूं, तो इन्हें मैं आ कहना चाहूँ कि भाई अकेलो जो को है वो भी खातर बहुत मुश्किल है। इन वास्ते आप भारत सरकार है वन भी सामूहिक के नाम पर एफपीओ चालू करिया 10,000 एफपीओ का आप अगर बनवाया तो एफपीओ या स्वयं सहायता समूह या कोई और अलग उत्पादक संगठन बनाओ भेड़ पालक जता करे वे एक साथ इकट्ठा हो और आपकी जो सामूहिक क्षमता है भी उठे जगह है सीधो थारो उत्पाद है वो किसान कपड़ा मिलाऊ जुड़ो ताकि बिचौलिया अन्य आप ज्यादा से ज्यादा कम कर सका और जो लाभ है वो सीधो भेड़ पालक करने जा सके। आई बात यदि मैं बात करना चाहूँ तो आई सेम जो है मांस में, क्योंकि मांस में भी जो है अभी आप अगर देखा मांस में स्लॉटर हाउस है तो वे जगह है वे एकदम आधुनिक और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने का अच्छा पैसों चाहिए, तो वो पैसों यदि वे संगठक बना ले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना ले तो भारत सरकार की बहुत सारी योजना है जगह में भी मान अनुदान मिल सके। प्लस जो मांस है वो जल्दी खराब होने वालों भी है।

0: तो एक हाथ रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां होगी या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी, ये सब जो किसान भाई और पशुपालक भाई बहन है वे संगठित होकर कर सके। प्लस जो आप म्यांमार जगह बेचे बाजार में वे आप आज के टाइम में सीधे यहाँ मन जितनी रेट बोल दी किसान भाई ऊपर नीचे कर मान जिए, कोई एग्जैक्ट तोलने की कोई व्यवस्था का नहीं। तो बहुत व्यवस्था वे जगह एकदम सामूहिक संगठन बना कर सके ताकि बांगू ही लाभ ज्यादा बढ़ी, बांगी ही जेब में ज्यादा ज्यादा आमदनी जा सके।
1: श्रोता डॉक्टर राजेश विश्नोई वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा अपने साथ छे और आपा ने बता रहा छे कि उन्नत भेड़ पालन में जो मूल्य श्रृंखला छे उनकी काई भूमिका छे और कितो महत्व छे। बात आप यहाँ से बहुत सारी कर रहे हैं, बहुत ही विस्तार से समझा रही है अपना जो भेड़ पालक भाई बहन जवाने समझा रहे हैं। अब आपसे डॉक्टर साहब यह जान पूछा ना कि घूम फिर बात आ जाओ छे भाई, कोई भी काम ना आप शुरू करा तो एक तो आधुनिकता और टेक्नोलॉजी दोनों को ज्ञान हो जरूरी छे आज का टाइम में अगर चोखो उत्पादन लेना चाहे तो जब आप बाजार की बात करा भेड़ पालन के अंदर या सामूहिक विपणन की बात करा या मूल्य संवर्धन की बात करा तो यहाँ की कई कई महती भूमिका छे इस श्रृंखला के मायने की कर यहाँ को ज्ञान रा कर यहाँ को उपयोग कर एक समूह बना एक जो भेड़ पालक भाई या बहन है वह आपकी आर्थिक स्थिति ने और की तरीका से मजबूत कर सके चे और कया और लोगों ने जोड़ सके चे व्यवसाय में।
0: जी जी बिल्कुल बहुत ही सही बात थे कि क्योंकि वो अभी डिजिटल युग है, क्रांतिकारी डिजिटल युग है और तकनीक है और जो किसान भाई पशुपालक तकनीक यदि दूर रह और या फिर वैज्ञानिक तरीके में भेड़ पालन बिंग दूर रह तो बिंगो जो को है परंपरागत पालन बिंगो बिंगी आय कौन बढ़ सके, बिना तकनीक अपनानी ही पड़ सी। और जो तकनीक है अब जिया मोबाइल है, अभी मोबाइल पर आप बैठा बैठा मौसम की क्या जानकारी है, भेड़ पालन में किसी बीमारियां आ रही है, किसका टीकाकरण करना है, पशु स्वास्थ्य संबंधी और कोई जानकारी है, वैज्ञानिक सलाह है, बाजार भाव है, ये सगड़ा मोबाइल पर उपलब्ध है। तो मोबाइल के माध्यमों और प्लस जो वैज्ञानिक तरीके में जो भेड़ पालन है वो जी हमारो संस्थान है केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आवे, जो समय समय पर किसानों के लिए जगह और भी वैल्यू चेन का जगह एक्टर है वहां खातर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावे तो बिन किसान भाइयों ने आए और किया मूल्य संवर्धन आप कर सका भेड़ पाले भेड़ का जगह है विभिन्न उत्पाद का मांगो प्रशिक्षण ले आपकी क्षमता विकास कर और आपको व्यवसाय चालू कर सके जनाब जो है बांगी आय ज्यादा में ज्यादा बढ़ सके।
1: तो आप बता रहे जो भाई नई तकनीक और जो डिजिटल युग में कदम से कदम मिलार ई व्यवसाय ने और भी बेहतर तरीका से करो जा सके, पर कई जगह मका भेड़ पालक भाई बहन छे वे या तो कम पड़ेड़ा छे या संसाधना को अभाव छे तो वाना आगे बढ़ावा के लिए और प्रोत्साहित करवा के लिए की कर शुरुआत करी जा सके।
0: वो अभी बहुत बढ़िया बात किए थे क्योंकि जो को भारत है वो अभी लगभग युवाओं को देश बनने वाला है और जगह आपके जगह युवा पीढ़ी है वो यदि वैज्ञानिक तरीके सही ज्ञान आपकी क्षमता और तकनीकी विकास यदि वो ले चल है तो वो इन्हें एक धंधे के रूप में अपना सके। जगह में यदि कोई भेड़ पालन बकरी पालन अमे जो भी नस्ल सुधार या मूल्य संवर्धन कोई भी काम करना चाहे तो भी मैं भारत सरकार जगह है माने 50% लेकिन इन्हें जरूरत है कि माने खुद में आगे आए और इन जगह इन व्यवसाय ने आपको यह ना मानो कि यार समाज में कई इमेज रही, इन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ अपने देखते हुए और इन्हें वैज्ञानिक तरीके में यदि करे तो आगे आने वाले युवा और मां खातर वो बहुत ही बड़ो लाभदायक एक व्यवसाय स्थापित हो सके।
1: डॉक्टर साहब अबार आप बात ही कर रहे थे भाई डिजिटल होनी चाहिए और आधुनिकता के साथ में ही काम ने शुरू करे जा सके चे। पर जो छोटा छोटा पशुपालक है वे ही काम ने शुरू करबो चाहे तो आपकी जो संस्थान है उनकी तरफ से कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम और ये चलाया जावे चे और की तरीका से जुड़े जा सके चे क्योंकि कई बार जानकारी का अभाव में आप सक्षम होता है भी काम कर कुन पावा तो थोड़ी सी जानकारी दे।
0: बिल्कुल सही बात की है क्योंकि जानकारी के कारण यदि कोई पीछे रह जाए तो बात बिल्कुल सही कौन है। इस वास्ते मैं आपके जितना हमारा किसान भाई और पशुपालकों आग्रह करूं कि यदि इस बारे में थाने कोई भी वैज्ञानिक जानकारी लेनी है तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर समय समय पर अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है कई स्कीम हमारी जो है वो शेड्यूल का सब प्लान एक नाम है जो कि आप आगे एससी के किसान खातर है, एक ट्राइबल सब प्लान है जो कि एसटी खातर है और जो जनरल ओबीसी का है वहां खातर भी आप जो है अलग अलग टाइम पर 10 दिन को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करा। इनके अलावा जो का आत्मा जो विभाग है आप आगे जो पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार है वे भी माने समय समय पर जो है स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित

0: जित करे और जो बाकी जो भी रिक्वायरमेंट आवे भी हिसाब में जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम अविका नगर में आयोजित करावा। इनके अलावा मैं पशु स्वास्थ्य शिविर, एनिमल हेल्थ कैंप, फील्ड डे और जो पशु प्रदर्शन, किसान मेला, ये भी हमारे संस्थान जो को है वो टाइम टू टाइम किसानों और भेड़ पालकों के लिए आयोजित करे। तो कोई भी यदि किसान चाहे तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सके, हमारी वेबसाइट भी है। और जो विभिन्न आप जिया थे डिजिटल की बात करे वहाँ तो हमारा विभिन्न सोशल मीडिया चैनल भी है, जिया ट्विटर पे भी है मैं हाँ, यूट्यूब पर हाँ, फेसबुक पर हाँ, लिंक्डइन पर हाँ। तो कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम कोई भी युवा भाई बहन CSWRA अविका नगर कॉन्टेक्ट कर आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर सके है। इनके अलावा मैं जगह अच्छा किसान है, मैं समय समय पर उन्नत क्वालिटी का मेंढा भी जो है वह भी प्रोवाइड करा।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से आप का जो पशुपालक भाई चाहे जो किसान भाई बहना चाहे वहां बता रहे चो, और जब आपनी बात अब समाप्ति की ओर चाहे तो कई जो बात जो कि आप का पशुपालक भाई ने का किसान ने कह चाहो ताकि वे और प्रोत्साहित हो गए, लोगों ने भी जागरूक करे और इस संस्थान से भी जुड़े और आपको जो काम चाहिए वो पशुपालन को उन्हें विस्तार से कर आपकी जो आजीविका को साधन चाहिए उन्हें मजबूत करे।
0: देखो किसान भाई और पशुपालक बहना खातर मैं कई चीजें कहना चाहूँ कि एक तो आपकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल जगह स्वस्थ और गुणवत्तापूर्वक जगह पशु है बंगो ही पालन करो
1: जी।
0: दूसरी बंगो संतुलित पोषण, टीकाकरण चाहे कृमिनाशन या बांगो मतलब नियमित स्वास्थ्य देखभाल करो क्योंकि बचाव ही उपचार है, बातचीत ध्यान रखो। तीसरी थारे मेमना की वृद्धि किया है, बांगे जीवित रहने की दर कितनी है, बांगे रिकॉर्ड मेंटेन करो। आज थे देखा करो जितना भी बजार में प्रोडक्ट आवे बाप रे इसके अंदर मंडूड़ो है
1: जी,
0: और भी स्कैन करियो अपन ध्यान पड़ जाए की आप फसल किसे खेत की है
1: सारी
0: जानकारी। हाँ भाई जानकारी आम में भेड़ पालन और आम है की देख वो मांस जो है वो प्रोडक्ट जो है इन स्कैन करो तो बिंगे जो ये टैगिंग उड़ो ध्यान पड़ जी को किसे फार्म आए किस आए। तो बहुत चीज जकी है डिजिटल टेक्नोलॉजी करनी है। और चौथो जो है ऊन और मांस की गुणवत्ता के आगे आगे थे ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के आगे आगे बिंग बाजार पर भी ध्यान दो सामूहिक हो तो समूह बना यदि थे सामूहिक विपणन मूल्य संवर्धन और बाजार में सीधे जुड़ाव रखो तो मैं मानू की भेड़ पालन जो है एक बहुत लाभकारी व्यवसाय साबित हो जाए।
1: काश्तकार में डॉक्टर राजेश विश्नोई वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा आज अपना कार्यक्रम में पधारे और आपने बताया कि उन्नत भेड़ पालन में जो मूल्य श्रृंखला है उसकी काई भूमिका है, काई महत्व है और की कर इसकी जानकारी ले आप फायदो ले सका चाह। इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी बताई डॉक्टर राजेश विश्नोई जी, आपको खूब खूब धन्यवाद। और आशा बहन ने भी धन्यवाद देवा नरपत भाई
2: बिल्कुल,
1: और कोरो धन्यवाद आपा देवा को नहीं
2: तो सुना देव चौकी से लोग रचना
1: बिल्कुल साहब।

0: बाबा रामदेव जी पदयात्रा भी चल रही है और आपा भी अर्जी लगा दिया रेडियो के माध्यम से गीत के माध्यम से बहुत चौकी सी हरीशचंद्र शर्मा पार्टी की आवाज में। और अब मंडी की तरफ चला नर्मद भाई, सब पहली बात करा गेहूं की। गेहूं को जो अधिकतम भाव रहे हो जयपुर की मंडी में 2630 रुपया प्रति क्विंटल, तो सारी मंडी में गेहूं रुभाव 2577 रुपया, बस्सी की मंडी में गेहूं रुभाव 2596 रुपया और अलवर की मंडी में गेहूं को भाव रहे 2611 रुपया प्रति क्विंटल।
1: साथ ही साथ बात करा बाजरा की, श्री माधोपुर बाजरा को अधिकतम भाव 2250 रुपये प्रति क्विंटल, जयपुर की बात करें तो 2100 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरा की भरतपुर मंडी में भाव है 2273 रुपये प्रति क्विंटल और आपा स्वाई माधोपुर में बाजरे की बात करा तो 2175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से।
0: बिल्कुल, सरसों की बात करा तो जयपुर की मंडी में सरसों का भाव 7885 रुपया, बस्सी की मंडी में सरसों का भाव 8095 रुपया, अलवर की मंडी में सरसों को भाव रहे 8000 रुपया और करौली की मंडी में सरसों को भाव रहे 7762 रुपया प्रति क्विंटल। आपा या जो तकनीक को सहारो ले रहे इंटरनेट के माध्यम से मंडी का भाव खोजा और अपना श्रोताओं ने बताया हाँ। और ई मंडी की बातचीत के सागे सागे कार्यक्रम रो टेम पूरो हो रहे हो किसान वाणी में। अब आ गया जो चंचल और
1: नरपत सिंह ने
0: करा चाला राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम की बाटो डीकता सगला श्रोतावा ने, ग्रामीण भाई बहना ने, काश्तकार साथिया ने, चंचलो ने भरियो मीठो मीठो हरियो भरियो सो राम राम। सगला बड़ा बुढ़ा ने एक बार ओजू ढोगर अजय और नरपत भाई आपने भी एक बार ओजू राम राम सा।
3: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह को राम राम और साथ ही चंचल बहन आपने भी राम राम।
2: नरपत भाई आज है 8 सितम्बर, एक लूटो दिवस पूरी दुनिया मनावे है जिन्हें कहवा हाँ आपा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी कि आखर पहचानबा की जो ज्योति है वो जगाबा की जो अलख जगाई गई है कि शिक्षा ही विकास की जो कहवा पहली सीढ़ी है और इसलिए हर इंसान को शिक्षित होनो बहुत जरूरी है, साक्षर होनो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, साक्षर रह लो तभी तो व्यक्ति पढ़ लो लिख लो समान रूप से समझबा की क्षमता भी रख लो।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि बार इस टाइम में जो साक्षर है अक्सर वो ज्ञानी सीमित कौन है। आजकल जो डिजिटल साक्षरता चाहिए, अपने वित्तीय साक्षरता चाहिए, अपने स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता चाहिए, बी की भी सूचना के बारे में अपन जानकारी रखनो चाहिए।
2: बिल्कुल, और देखो साक्षरता को मतलब यो तो है ही है कि आप अखर पहचानबा लाग जाओ, आप पढ़बा लिखबा लाग जाओ। जब आप साक्षर हो जाओ हो, जब आप शिक्षित हो सको हो, है ना, क्यों हो सको हो, साक्षर होबा में शिक्षित होबा में अंतर है। शिक्षित होबा को मतलब है ज्ञान ने बढ़ानो, अपनी सोच ने विकसित करनो। तो अक्षर ने जाना ला, यदि आपा नई नई जो योजना है कोई नवाचार हो रहा है बाका बारे में पढ़ सकाला, आपने जो इतिहास है सच्चो इतिहास है बिने पढ़वा खातिर भी अहिया तो आप तकनीकी युग में खूब वीडियो आवे है, खूब सारी जानकारी आप सुन सको हो, लेकिन अगर सच्ची शिक्षा लेनो चाहो हो तो आपने किताबा की तरफ जानो ही वेलो, सच्चो इतिहास पढ़नो ही वेलो, साची बाता ने जानो ही वेलो, और झूठ और सच को फर्क करवा के ताई भी ताको साक्षर होना जरूरी है ताकि आप पढ़ सको। और अपना जितना भी बड़ा बड़ा विद्वान हुआ है और आदर्श प्रेरणादायक व्यक्तित्व हुआ है वहां सबकी जीवनिया है, बा ने पढ़ाला तो खुद का जो व्यक्तित्व है भी को विकास कर सका हा। तो कुल मिलार अपना सर्वांग विकास के लिए, देश दुनिया का विकास के लिए हर इंसान को साक्षर होना बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, क्योंकि आप व्यक्ति जो साक्षर हो लो तो सोच भी सकारात्मक हो जा ली, वो सकारात्मक परिवर्तन भी ले लो। एक शिक्षित व्यक्ति एक स्वयं निर्णय लेने में सक्षम भी हो जाए, क्योंकि वो दूसरा के ऊपर निर्भर कर रहे, नहीं तो अगर अनपढ़ रह लो तो वो दूसरा का हर काम करवा के लिए दूसरा पर निर्भर रह लो, तो साक्षर हो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, आप जो निर्भरता की बात कर रहे हो ना कि दूसरा पर निर्भर रहना पड़े है, क्यों पढ़ सुना दो क्यों लिखर भेज दो। अच्छा एक गीत भी आपने कि बा भी मैं एक जो घोरी होवे बा कहवे डाकिया सु मारो कागज लिख दे, क्योंकि खुद पढ़ी लिखी कौन है तो बा डाकिया सु ही लिखवावे, और वो गीत मैं चाहूंगी कि आपने सारा श्रोतावा ने भी आपा सुनावा।
3: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: बहुत ही फूटरो सो गीत और सीमा मिश्रा की आवाज में आपा सुनया। और इन्हें सुनता सुनता ही मने ध्यान आयो कि आपनों जो कार्यक्रम है वो एक तरीका की मोतिया की माला है, जिमें गीत संगीत है, बाता चीता है और जानकारी भी है। तो गीत सुनया तो जानकारी की तरफ चला।
1: बिल्कुल, किसान सहायता देखो जानकारी देवा के वास्ते अपने बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता। आप प्रोफेसर हैं पादप कारिकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप पधारी हैं और आपसे आज जानकारी लेवेगा जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो डॉक्टर सुनीता जी स्वागत है आपको। राम राम।
2: राम राम किसान भाई, राम राम।
1: सबों पहले तो जो को मौका किसान भाई बहनी आने यह बताओ कि जो जैव प्रौद्योगिकी ये विषय पर बात कर रहे हैं तो वो कहीं है सब।
2: किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी क्या विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो जीवों और जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे कि जीन होते हैं उनको साइंटिस्ट होते हैं उसको यूज कर करके किस तरह से इनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर लेते हैं और किस तरह से ये सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं या समाज कल्याण के लिए हितकारी होते हैं। तो ये जैव प्रौद्योगिकी की एक बेसिक साइंस की ब्रांच है जिसमें सभी शाखाओं जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है, इनका सभी का सम्मिलन होता है।
1: जी साहब, ये तो हो परिचय। और आप खेती किसानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब यह बताओ कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इको कृषि में क्या इतिहास रही है?
2: जैव प्रौद्योगिकी की जो का इतिहास जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में जो

0: धागे का उपयोग करते थे खमीर के रूप में, ब्रेड और शराब बनाने के रूप में करते थे। लेकिन जो इसकी विधिवत शुरुआत हुई है वो 20वीं सदी के अंत में हुई थी, जब डीएनए की संरचना को हमने जान लिया था और जीन ट्रांसफर की जो तकनीक है उनको हमने विकसित कर लिया था। सबसे पहले 1983 में जो है ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनका परीक्षण किया गया और सन 2014 में पहला ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आया था जिसके जो कि हम जानते हैं टमाटर का फ्लेवर सेवर टमाटर। और इसकी जो क्वालिटी क्या होती है कि ये एक जेनेटिकली या जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है और इसमें जो शेल्फ लाइफ है मतलब इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने दिया था, उसके बाद भारत में 2002 में बीटी कपास आया था, तब से ही जो है प्रचलन चालू है जैव प्रौद्योगिकी का और अभी तक इसकी शुरुआत प्राचीन समय से चली आ रही है वो अभी तक कायम है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो की जीएम फसल है या कहीं हुआ है और इसका लाभ के ही
0: किसान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जीएम फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कि किसी अन्य स्रोत से, चाहे हम उसको बैक्टीरिया से लें या किसी अन्य प्लांट से लें, किसी अन्य जीव से लें, उनके जीनों को हम जो कि किसी वांछित करेक्टर्स के लिए, वांछित गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीएम फसल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है बीटी कपास, और जिसमें एक जीवाणु होता है बेसिलस थुरिंजेंसिस, उसमें जो स्थित जो जीन होता है उसके द्वारा बीटी कपास को कीटरोधी बनाया जाता है और ये आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो है जीएम क्रॉप है। इसके अलावा कुछ सूखा रोधी किस्में होती हैं, कुछ लवण सहनशील किस्में भी इस तरह से जीएम क्रॉप्स के रूप में विकसित की जा चुकी हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो जैव प्रौद्योगिकी है एक द्वारा कौन कौन सी फसलें विकसित करी गई?
0: देखो, जैव प्रौद्योगिकी के लिए कुछ किस्में विकसित कर ली गई हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण है इसका है बीटी कपास। जैसे अभी मैंने इसमें भी बताया था कि जो बीटी कपास होती है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसमें क्या होता है कि कपास में एक पिंक बॉल वर्म जो होता है वो कीड़ा अटैक करता है और जिससे इस फसल को नुकसान होता है। तो इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस फसल में जो क्राइजीन होता है, जो बैक्टीरिया होता है जीन उत्पन्न करता है जिसको कि हम क्राइजीन कहते हैं, उसके द्वारा इस फसल को, जब ये लार्वा या जो पिंक बॉल वर्म इस फसल को खाता है तो उसके ये जो प्रोटीन है वो उसके ग्लट में जाकर के और उसको नुकसान पहुंचाता है और जिससे जो इस फसल को है कीटरोधी बनाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है जीएम फसल का वो है गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी है और इसमें जो चावल है इसमें सबसे अच्छा है कि ये न्यूट्रिटिव है, इसमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जिससे जो कुपोषण की समस्या उससे निजात मिल सके और इसका जो चावल का जो रंग होता है वो सुनहरा होता है, इसी वजह से इसका नाम गोल्डन राइस रखा गया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है जीएम मक्का और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इसमें भी ये जो क्रॉप है ये सूखे के प्रति सहिष्णु है, तो जहां पर क्लाइमेट चेंज होता है या जहां पर वर्षा की कमी होती है वहां पर इस फसल को उगा करके अच्छी इनकम किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जो कि खाद्य सुरक्षा की बात आवे है तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा के खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जा सके?
0: बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि जो हमारी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और जो फूड की कमी होती जा रही है, तो ये जीएम फसलें उस सुरक्षा की दृष्टि से काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जैसे कि बीटी कपास, अब बीटी कपास के रूप में यदि हम देखें तो ये जो होती है कीटरोधी किस्में, इसके साथ साथ इसके उपयोग से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स में या इंसेक्टिसाइड में जो किसान जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो खर्च कर देते हैं उससे उसको निजात मिल सकती है। और दूसरा, जो कीटनाशकों के उपयोग से जो पर्यावरण में जो असंतुलन आता है, जो पर्यावरण में गिरावट आती है या पर्यावरण की जो संतुलन है वो नहीं रह पाता, तो इसके उपयोग से इससे भी हमें बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो उदाहरण के लिए यदि हम बताएं कि किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, तो जो इकरी सेट है जो कि हैदराबाद में है उसने चने की सूखे के प्रति सहनशील, मूंगफली की भी एक किस्म दी है जो कि पंड रोग के प्रति प्रतिरोधी है, बाजरा की ऐसी किस्में तैयार कर ली है कि जिनमें आयरन और जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे कि जो है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमें मिल सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जगह किसान भाइयों के लिए आप बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो किसानों के लिए कहीं लाभ आएगा?
0: देखो किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और कीट व रोग प्रतिरोधक फसलें मिलती हैं जो कि अभी हमने बताई चुकी हूँ। इससे जो होती है उनकी जो

0: फसलों को उगाने की जो उत्पादन लागत होती है वो भी कम हो जाती है, और जब उत्पादन लागत कम हो जाती है तो किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जो इन फसलों के प्रयोग से जो हम हानिकारक कीटों के प्रयोग से बच जाते हैं, तो इससे हम पर्यावरण की अनुकूल प्रौद्योगिकी भी विकसित कर लेते हैं, हम अपने पर्यावरण को भी अनुकूल बना देते हैं। तो जैसे अपनी अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने बीटी कपास की बात करी, और इसके अलावा जो अभी हमने गोल्डन राइस की बात करी कि जिसके प्रयोग से या जो गोल्डन राइस जो किस्म पैदा की गई है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, तो इससे जो पोषक तत्व में या जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो खराब मौसम के लिए कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कई बार उच्च तापमान की वजह से भी जो है फसलों को नुकसान हो जाता है, इन सभी खराब मौसम, सूखा और अत्यधिक तापमान को सहनशील करने वाली फसलें भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित कर ली गई है, और इसकी वजह से ही जो है किसान जो है इसका लाभ अपनी खेती में कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अपना खेत वहीं भी कमाए, जो खेत की मिट्टी है वह फसल उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता है बिना बढ़ावा के वास्ते भी जो है जैव प्रौद्योगिकी सहायक हो सकेगी?
0: बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जो मृदा की जो उर्वरकता है वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। देखो, अब किसी भी फसल को बढ़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम माइक्रोबियल जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मृदा सुधार का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो जो हमारे कुछ चने वाली फसलें होती हैं या जिनको कहना चाहिए जो पल्स क्रॉप होती हैं, उनके जो जड़ों में क्या होते हैं माइक्रोबियल कवक और नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने वाले जीवाणु होते हैं, और जिससे कि है इस तरह से हम अपने जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को है या नाइट्रोजन की आपूर्ति है उसको हम इन जीवाणुओं द्वारा कम कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह के फसलों में से जो जीन को निकाल करके ये अनाज वाली फसलों में भी ट्रांसफर किया गया है, जिससे ये फसलें भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके या जो सहसंबंध बना सके पौधों में और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
1: तो डॉक्टर साहब, ईका द्वारा जो है बायो पेस्टिसाइड्स को निर्माण की प्रकार से हुआ है?
0: जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये जो अपने सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं उनका एक विकल्प होता है। जो हम सिंथेटिक बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये वातावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, साथ ही किसानों को इसकी उच्च रेट भी देनी पड़ती है। इसके विकल्प के रूप में जो पौधों में या जीवों में और जंतुओं में जो इस तरह के रसायन होते हैं उनको जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको एक्सट्रैक्ट कर करके और बायो पेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो फसल है जैसे नीम है, पायरेथ्रम है, कपास है और तंबाकू है आदि जो वनस्पति, ये जो बायो पेस्टिसाइड है ये कम खर्चीले भी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से इनको किसानों को इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि इनका जो खर्चा आता है वो भी कम आता है और ये फसलों में बहुत अधिक कारगर साबित हो रहे हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत चौकी देखो आप बात बताया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, किसान का जो खेत वी की मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बढ़ावा में भी सहायक है और खाद्य सुरक्षा ने भी सुनिश्चित करा है। तो इसके अलावा अब चलता चलता जो माँ का किसान भाई ही बाने ये विषय पर अपनी तरफ से और कोई बात ये चर्चा में रहेगी तो आप अपनी तरफ से कहो चाहो तो आप बता सकते।
0: देखिए किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी वैसे एक महंगी तकनीक है, किसानों के लिए महंगी तकनीक है, लेकिन यदि हम इस तकनीक का उपयोग करके अपने जो फसल है यदि उसमें वैज्ञानिक उसमें वांछित गुणों का उपयोग कर लें, अपने जो समस्याएं आ रही है चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे और दूसरी समस्याएं हो जो कीट रोधी हो, इस तरह की यदि हम फसलें तैयार करना चाहते तो उसके लिए जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बहुत अच्छी तकनीक है। और मैं तो चाहूंगी कि किसानों को भी इस तकनीक से रूबरू होना चाहिए, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको अपनाना चाहिए।
1: तो किसान भैया, आई जानकारी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और आ जानकारी आपने दी डॉक्टर सुनीता गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं पादप कार्यकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप आई और किसान भैया ने अतिरिक्त चौकी और उपयोगी जानकारी दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और धन्यवाद महेश भाई आपने भी देवाला क्योंकि बहुत चौकी जानकारी आप दिलवाया। नरपत भाई कहवे है ना कि अगर अर्जुन न वहतो तो जो भगवान कृष्ण है गीता का उपदेश कौन दे पाता, क्योंकि जो सवाल करबाड़ो है अगर उचित पात्र कोनी या उचित तरीका का सवाल कोनी करे तो जो जवाब है वे बशा कोनी आवे भी कलेवर में कोनी आवे जो कि लोगा को उद्धार कर सके। तो बात यही है कि आपा लोग सब साथी अर्जुन की भूमिका में रहवा हाँ और अपना जो विशेषज्ञ आवे है पे ज्ञान देवा आवे है और ज्ञान की सार्थकता जदि है जद

0: सुन बालो, सिर्फ सुने को नहीं विन गुणे भी। और आपना जी का श्रोता है, मैंने लागे है कि वह तो मुस्तैद भी है, जागरूक भी है, नवाचारी भी है और तकनीकी का मास्टर भी होता जा रहा है। तो वह जो भी ज्ञान आप कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ के माध्यम से बात तक पुगावा हाँ, वे बिना लेवे भी है, समझे भी है, जाने भी है, अपनावे भी है और अपना आसपास का काश्तकार तक पहुंचावे भी है। जदि तो आपने जो राज्य है, आपने जो प्रदेश है वो खेती बाड़ी में खूब तरक्की कर रहे है।
1: तो अपने विशेषज्ञ और जो अपने भाई छे आप करो करो धन्यवाद कौन दे।
0: बिल्कुल धन्यवाद तो करो दे ही को नहीं सका, आ तो आपने कार्यक्रम के रीति को नहीं। तो गीत संगीत की बात आप इशारों कर रहे हो मैं समझ रही हूँ, तो मुझे चौपाल के रीत सुना एक प्यारो सो मीठो सो लोक गीत
1: सुनाओ सर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन से ये गीत। गीत लिखा फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। स्वर दिया एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म कोई मिल गया से ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोई मिल गया से ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आगे फिल्म कहो ना प्यार है से ये गीत।

भावना प्यार है। अभी आप इस फिल्म से ये गीत सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा इब्राहिम अश्क ने और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म अनाड़ी से यह गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी से ये गीत। गीत लिखा समीर ने, संगीत दिया आनंद मिलिंद ने और इस गीत को स्वर दिया उदित नारायण ने। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरो नंबर वन से ये गीत, उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में। गीत लिखा समीर ने और संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा यह फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, अभी कुछ ही देर में रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, उसके बाद समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और उर्दू में समाचार। रात 9:30 आप सुनेंगे मनी टॉक और मंथन। यह सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये

0: तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। दलित ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत, साउथ जोन से 466 रन आगे। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अलेक्जेंडर ब्लॉक्स और एलिना रिबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने जापान और पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया। और पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ किया अपने अभियान का समापन। कार्यक्रम की शुरुआत करते तीरंदाजी से, जहां खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक अपने नाम किए। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार, श्याम सुंदर स्वामी, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारतीय तीरंदाजों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों की कंपाउंड और रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि स्वाति चौधरी ने एक ही दिन में 2 पदक हासिल किए। मौजूदा विश्व चैंपियन तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी की पुरुष कंपाउंड जोड़ी ने इराक के अब्बास कादम और अनवर अल दावूद को 152-139 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं 2 बार के पैरालंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने के डेविड इवान और डेनिस इवान को 6-2 से पराजित कर शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीन के हाथों 0-6 से हार मिली। स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स टीम W1 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 वर्ग में भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। उन्होंने रूस की एलेना क्रुतोवा को 6-2 से हराया। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि W1 रिकर्व कंपाउंड वर्ग गंभीर शारीरिक अक्षमता वाले पैरा तीरंदाजों के लिए विशेष श्रेणी है। इस वर्ग में खिलाड़ी व्हीलचेयर से निशाना लगाते हैं और एक ही स्पर्धा में रिकर्व या कंपाउंड धनुष का इस्तेमाल करते हैं। उधर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत कांस्य पदक से चूक गया। शीतल देवी और पायल नाग तीसरे स्थान के प्लेऑफ में चीन की वांग हुईटिंग और गाओ फांगशिया की जोड़ी से हार गई। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दलित ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ जोन ने 6 विकेट पर 242 रन बना लिए हैं। तिलक वर्मा 56 और चामा मिलिंद 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: ईस्ट जोन ने दलित ट्रॉफी के फाइनल मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर बनाया। अभिमन्यु ईश्वरन ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। वैभव ने 44 रन बनाए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने शिखर मोहन के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन जोड़े और कुमार कुशाग्र के साथ 230 रन की साझेदारी की। इसके अलावा ईशान ने अनुकूल रॉय के साथ छठे विकेट के लिए 140 रन जुटाए। ईशान ने 7 छक्कों और 30 चौकों के साथ 270 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। विपक्षी खेमे से त्रिपुरन विजय ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि चामा मिलिंद और श्रेयस गोपाल को 2-2 विकेट हाथ लगे। साउथ जोन ने तीसरे दिन की समाप्ति तक पहली पारी में 6 विकेट पर 242 रन बनाए। देवदत्त पड्डिकल ने नारायण जगदीशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 70 के स्कोर तक पहुंचा दिया। जगदीशन ने 6 चौकों के साथ 32 रन बनाए। पड्डिकल ने 4 चौकों के साथ 62 रन की पारी खेली। टीम ने 129 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए स्मरण रविचंद्रन के साथ 5वें विकेट के लिए 45 रन और श्रेयस गोपाल के साथ 6ठे विकेट के लिए 66 रन जुटाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। ईस्ट जोन की ओर से मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। कौनेर कुरैशी और शिखर मोहन ने 1-1 विकेट लिए। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये मुकाबला ईस्ट जोन के लिए ऐतिहासिक है। ईशान किशन ने 250 से ज्यादा का रन बनाया और मोहम्मद शमी ने भी अपना 100वां मुकाबला खेल रहे। उधर आईसीसी ने आज T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा रैंकिंग में श्री चर्नी पहले, इंग्लैंड की सोफी एटलस्टन दूसरे, इंग्लैंड की चार्ली डीन तीसरे, दक्षिण अफ्रीका की एन मलबा चौथे और इंग्लैंड की लैरन बेल 5वें स्थान पर है। भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को 2 स्थान का फायदा हुआ है। दीप्ति

0: छठे स्थान पर पहुंच गई हैं। उधर बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले, जॉर्जिया वॉल दूसरे, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तीसरे, वेस्टइंडीज की हिली मैथ्यूज चौथे और भारत की स्मृति मांधना पांचवें स्थान पर, जबकि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर दसवें स्थान पर हैं। और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने लुसियानो डाडरी को 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उधर अलेक्जेंडर ब्लॉक्स ने फ्रांसिस्को सेरियनडोलो को 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अलेक्जेंडर का सामना कल खचानोव से होगा। मुकाबले से पहले अलेक्जेंडर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
1: I just do my thing. I work hard. Even though I have tough losses sometimes, I know that good times are always coming. And now it's one of those good times. So I'm going to try to enjoy it as much as I can.
0: उधर क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन का सामना चैंपियन कार्लोस अल्काराज से होगा। अल्काराज ने इस मुकाबले को रोमांचक बताया।
2: Shelton, really powerful player. I think he used the crowd, the people, you know, behind him, you know, especially when, you know, he's playing here at home. So I'm excited about playing, you know, the quarterfinal. I'm going to be ready when I watch it. I'll be ready for that.
0: उधर बेन शेल्टन ने कहा कि कार्लोस एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं।
3: To be not playing for 5 months, to come out and do what he's done so far this tournament has been superhuman. We're happy to have him back on tour. You know, he lights up the stadium every time he plays. I think it's going to be fireworks on Tuesday night.
0: तर महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना ने नाओमी ओसाका को 6-1, 6-4 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। क्वार्टर फाइनल में एलिना का मुकाबला क्विनिन झेंग से होगा। मुकाबले से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
4: Well, of course, I wanted, I don't know anyone who wouldn't wish this, but yeah, definitely that's one of my goals, and I try to approach the same way, try to do everything I can, fight till the end my next match, and let's see what's going to happen, but yeah, if I serve well as I did today, I think I have all the chances, so yeah, again, I try my best, and hopefully it's going to go my way.
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज क्वार्टर फाइनल में एरिना सबालेंका और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने होंगी। और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वहीं महिला टीम ने जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
5: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हरा दिया। भारत ने 5वें मिनट में अनमोल के पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बढ़त बना ली। दक्षिण कोरिया के डोहोन चोई ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे क्वार्टर में लवनूर सिंह ने 18वें मिनट में फील्ड गोल करके भारत को आगे कर दिया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने होगो क्यू की मदद से पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। अजीत यादव ने 20वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त 3-2 कर दी। दक्षिण कोरिया ने तीसरे क्वार्टर में मैच का अपना दूसरा गोल किया, जिससे कोरियाई टीम तीसरी बार 3-3 से बराबर पर हो गई। जब मैच आखिरी क्वार्टर में बराबरी की ओर बढ़ रहा था, तो प्रभदीप सिंह ने तीसरे क्वार्टर के आखिर में बैक थ्रू पाया और 42वें मिनट में इंडिया की लीड 4-3 कर दी। चौथे क्वार्टर में गुरसेवक सिंह ने भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद अनमोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर फिर से गोल करके स्कोर 6-3 कर दिया। आर्यन जेस ने 98वें मिनट में निर्णायक गोल को 7-3 से भारत की जीत पर मुहर लगाई। वहीं महिला टीम ने अपने तीसरे एलीट पूल मैच में जापान को 7-0 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने 5वें मिनट में कृष्णा शर्मा के गोल से 1-0 की बढ़त बनाई। 9वें मिनट में जापान के फाउल करने पर भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिससे उनकी बढ़त दोगुनी हो गई। पूर्णिमा यादव ने 14वें मिनट में फील्ड गोल दागा और भारत ने पहले क्वार्टर का समापन 3-0 की मजबूत बढ़त के साथ किया। भारत हाफ टाइम तक 3-0 की मजबूत बढ़त के साथ आगे रहा। इसके बाद भारत ने फिर से अपनी गति बढ़ाई और 5 मिनट में 3 गोल दागे। गीता यादव ने 41वें मिनट में फील्ड गोल करके स्कोर 4-0 किया और फिर 45वें मिनट में अपना दूसरा गोल पूरा किया, जिससे भारत की मजबूत स्थिति और भी मजबूत हो गई। पूर्णिमा यादव ने 46वें मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और तीसरे क्वार्टर के आखिर तक भारत की बढ़त को 6-0 तक पहुंचा दिया। भारत ने आखिरी क्वार्टर के 50वें मिनट में

0: तानिका चंद्रकांत के गोल की मदद से मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर भारतीय महिला हॉकी टीम जापान के आईजी नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए रवाना हो गई है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम को पूल बी में जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है। टीम अपना कैंपेन 20 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ शुरू करेगी। इसके बाद 21 सितंबर को इंडोनेशिया, 23 सितंबर को थाईलैंड, 25 सितंबर को जापान और 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ मैच खेलेगी। और अब बात पिकल बॉल वर्ल्ड कप पर। पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया। वियतनाम के दानांग में भारत ने 7 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य समेत 41 पदक जीते। भारतीय टीम पिछले साल 7वें स्थान पर रही थी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: 48 भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए किड्स, जूनियर्स, ओपन, सीनियर्स और मास्टर्स टीम इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसके अलावा 130 से ज्यादा खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत कैटेगरी में भी मुकाबला किया। वीर शाह के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने किड्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इसमें विरांश चोपड़ा, आर्यन बल्लानी, महिका राठौर, मानसी कार्तिक, आश्रिता एस, कबीर मेहता और प्रार्थना मोटियानी शामिल थे। भारतीय कप्तान को किड्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर भी सम्मानित किया गया। भारतीय जूनियर टीम क्वार्टर फाइनल में वियतनाम टीम से हारकर चौथे स्थान पर रही। भारतीय ओपन टीम क्वार्टर फाइनल में यूएसए से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इंडियन मास्टर्स टीम भी क्वार्टर फाइनल में वियतनाम से हार गई। वहीं सीनियर टीम न्यूजीलैंड से हारकर राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई। इस बीच हर्ष मेहता ने व्यक्तिगत इवेंट में ओपन प्रो मेंस डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि पूर्वांश पटेल ने अंडर 18 बॉयज सिंगल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। भूषण अकुत ने अशोक रोहिरा के साथ 60+ मेंस डबल्स, 60+ मेंस सिंगल्स और 60+ मिक्स डबल्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। फेरोज जैदी ने 40+ वुमेन सिंगल्स में जीत हासिल की, जबकि विवेक रेड्डी ने इसी कैटेगरी में मेंस इवेंट जीता। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब जन्मदिन विशेष में आज क्रिकेटर और भारतीय कप्तान शुभमन गिल का 27वां जन्मदिन है। शुभमन गिल ने 43 टेस्ट मैच में करीब 43 की औसत से 3,043 रन बनाए। वहीं एक दिवसीय क्रिकेट के 67 मुकाबलों में लगभग 60 की औसत से 9 शतकों की मदद से 3,379 रन बनाए हैं। वहीं 2020 में 869 रन का उन्होंने योगदान दिया है, जिनमें एक शतक भी शामिल है। शुभमन गिल ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को शीर्ष पर रखा है और ये प्रमाण भी है कि इंग्लैंड में उन्होंने 5 शतक लगाए और 700 से अधिक रन भी बनाए।
3: ये तो ध्यान में होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट है, अगर आप जल्दी आओ तो सारा दिन आपको बाहर बैठने को मिलेगा और जितनी देर आपको क्रीज में है उतनी देर आप रन बना सकते हैं, बाहर बैठ के रन बन सकते। इसलिए ख्याल तो रखना पड़ता है कि लिफ्ट नहीं मारनी, जितना हो सके अपनी तरफ से ग्राउंडेड खेलना है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लूज बॉल फुल टॉस वगैरह मिलती है तो उन्हें मैं हवा में लिफ्ट मार देता हूँ। मेरा मकसद तो वही है कि वो इंडिया का अपने टैग लगा।
1: स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से शुभमन गिल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करें कि शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप में ऐसा ही प्रदर्शन कर भारत का नाम और आगे बढ़ाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और

0: अपने सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September.

0: September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है
4: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं
3: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है
5: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: ये आकाशवाणी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी एक रिपोर्ट
6: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में

0: पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
2: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरी अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी पांचवाड़ा का यह चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म तुम्हारे लिए में सुना। लीजिए अब किशोर कुमार का गाया अनुरोध फिल्म का गीत सुनिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सुनिए इंदिवर का लिखा गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम कुर्बानी।

अभी आपने इजाजत फिल्मी आशा भोसले को सुना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया किनारा फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है गुलजार ने।

आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है आपके हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाली वर्सेटाइल गायिका आशा भोसले पर। आठ सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में जन्मी संगीत नाटकों के अभिनेता गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री आशा को फिल्मों में गाने का पहला अवसर तब मिला जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 1943 की ये मराठी फिल्म थी माझ बाळ। संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। हिंदी फिल्मों में आशा जी की शुरुआत 1948 के हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। श्रोताओं, आशा भोसले के गाए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे इस प्रतिभावान गायिका के हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गाए लगभग सभी प्रकार के गीतों की। जी हां, भक्ति रचनाएं, गजल गीत, लोक गीत, कव्वाली, पॉप गीत, अन्य भाषाओं के गीत, विदेशी संगीतकारों तथा गायकों के साथ गायन और शास्त्रीय संगीत भी।

शास्त्रीय संगीत का एक मंजा हुआ कलाकार ही अपनी गायकी में इतना वैविध्य दिखा सकता है। आशा भोसले की गायकी की सफल यात्रा हिंदी और मराठी में समान रूप से जारी रही।

माडगुळकर, बा. भ. बोरकर, आरती प्रभू, शांता शेळके, शांताराम नांदगांवकर, सुधीर मोघे और सुरेश भट्ट जैसे नामचीन कवियों की रचनाएं, जब वसंत प्रभु, दत्ता डावजेकर, सुधीर फड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े और श्रीधर फड़के जैसे ख्यातनाम संगीतकारों की सुरावली में बंधकर आशा भोसले के कंठ से निकलती है, तब वो सुनने वालों के दिल में उतरकर उनके भाव विश्व को हिलाकर रख देती है।

संत अमृत राय हो, संत जनाबाई हो, संत ज्ञानेश्वर हो या किसी और संत की रचना, आशा भोसले के भक्ति रस में डूबे सुरों से सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। मराठी भाव गीतों की दुनिया में आशा जी का नाम शीर्ष पर है। गदी

महाराष्ट्र में संगीत प्रेमियों के मन में नाट्य संगीत का विशेष स्थान है और उसमें नाट्य गीत यदि आशा भोसले के स्वर में हो तो क्या कहना।

लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को आशा जी का स्वर मिला तो ये गीत फिल्मी हो या गैर फिल्मी अभिजात हो गए क्लासिक्स में गिने गए। जैसे जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीतकार जयदेव।

कभी नेकी भी उसके जी में आ जाए है मुझसे। गालिब साहब का ये कलाम और ऐसी ही हिंदी उर्दू की अन्य रचनाएं आशा जी के स्वर में सुनकर श्रोताओं के दिलों में आज भी चैनो करार आ ही जाता है और उभरने लगती हैं यादें गजलों के उस एल्बम की जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था गुलाम अली के साथ मेरा

साथ साथ सज जाती है आशा जी के जादुई सुरों की महफिल। सामईन के जहन में आज भी उन्हीं दिनों में जाने माने गजल गायक हरिहरन के साथ आशा भोसले ने रिकॉर्ड किया था एल्बम आबशार।

आपकी आशा। इस एल्बम के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरे थे। संगीतकार राहुल देव बर्मन। मजरू साहब का ही लिखा हुआ गाना गाकर आशा भोसले ने अपने आप को साबित किया था पॉप म्यूजिक की दुनिया में। संगीत लेस्ली लुई का। एल्बम का नाम जानम।

80 के दशक के जाते जाते और 90 के दशक की शुरुआत में संगीत प्रेमियों में फिल्म संगीत की बनिस्बत गैर फिल्मी संगीत कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। गीत, गजल, इंडी पॉप और भजनों के नए नए एल्बम बाजार में आ रहे थे। इसी दौरान संगम हुआ संगीत की दुनिया के तीन महान हस्तियों का, जो फिल्मों में इससे पहले कई बार हो चुका था। जी हाँ, गुलजार, आर डी बर्मन और आशा भोसले। इस त्रिवेणी संगम से उभरा एक अनूठा अनोखा अलबेला एल्बम दिल पड़ोसी है।

पड़ोस में ही नहीं चाहने वालों के दिल में ही घर बना लिया इन गीतों ने, और ये गाने आज भी गूंज रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों की लोकप्रियता के इस दौर में अपनी बहन गान कोकिला लता मंगेशकर और गजल नवाज जगजीत सिंह के साथ मिलकर आशा भोसले ने अपने चाहने वालों को जो तोहफा पेश किया था, उस एल्बम का नाम था दिल कहीं होश कहीं।

मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ बांग्ला भाषा में आशा भोसले के गाए गीतों का एक सफलतम करियर रहा है। आशा जी ने सबसे पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड किया था 1958 में। मन्ना डे द्वारा संगीतबद्ध इस युगल गीत में उनके साथ आवाज थी विनोद चट्टोपाध्याय की। अगले ही वर्ष 1959 में आशा भोसले ने अपना पहला पूजो गीत रिकॉर्ड किया। ये वो देवी स्तुति के गीत होते हैं श्रोताओं, जो बंगाल में नवरात्रि के समय प्रकाशित होते हैं। आरडी बर्मन ने हिंदी फिल्मों के कुछ लोकप्रिय गीतों को बांग्ला में रिकॉर्ड करवाया था। ये गीत हैं।

खोलती इस आवाज में किसी भी भाषा के गीत हों, सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्मी गीतों का आज जिक्र ही नहीं होगा। आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी गीत अनसुने हैं या बहुत कम सुने जाते हैं, जैसे फिल्म अनकही का

1980 के दशक के मध्य में बॉय जॉर्ज और स्टीफन ल्यूसकॉम के साथ आशा भोसले ने गीत गाए हैं। 1997 की बात है, युवकों के एक संगीत समूह कोड रेड के साथ मिलकर आशा जी ने एक प्रेम गीत रिकॉर्ड किया था अपनी उम्र के 64वें साल में। जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले ने हमेशा संगीत को अहमियत दी। संगीत के क्षेत्र में होने वाले प्रयोग उनके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर संगीतकार नई पीढ़ी के हों, भारत के हों या विदेश के, गीत किसी और भाषा का हो, आशा जी ने हर चुनौती को स्वीकार किया और जब जब जिस गीत को गाया अपने स्वर्णिम सुरों से उस गीत को सुशोभित कर दिया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा जी को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण प्रदान किया जा चुका है। भारतीय सिनेमा को योगदान के लिए आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग अनुराग और वैराग्य का सुखद संयोग जहां है, वो है आशा भोसले का स्व अलंकृत स्वर। हम सब की प्यारी आशा ताई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं के गाए इस गीत के द्वारा देते हैं अनंत शुभकामनाएं।

0: आशा भोसले पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आलेख, शोध और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात्रि के 10 बजे हैं। पेश नजर है फिल्म संगीत।

हवाओं में प्यार की खुशबू घुली है, दिल की हर धड़कन उसी में ढली है। एक अजीब सा सुकून मिलने लगा, जिंदगी अब पहले से भरी है। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं। सुनते हैं मेरे हमदर्द मेरे दोस्त फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। महफिल में भी तन्हाई महसूस होती है जब याद किसी के पास होती है। दिल चाहता है बस एक ही दुआ, वो चाहत हमेशा खास होती है।

मेरी हमदर्द एक दोस्त से सुन करके तुम्हें अपने मनोरफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में मनोरफी की आवाज में आंसू फिल्म का गीत। मुस्कुराहटों में छुपा राज है, गम में बस एक ही आवाज है।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में आरजू फिल्म का गीत सुना, जब जब फूल खिले। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बोलान बख्शी के हैं, तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

रात की तन्हाई भी प्यारी लगती है, यादों की परछाई भी प्यारी लगती है। जब दिल में कोई बसा है, हर चीज सुहानी लगती है।

जब जब फूल खिले, उस दिन के गीत उन्हें अपनी लता मंगेशकर की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी की आवाज में दो कलियां फिल्म का ये दुगाना, जिसे लिखा है साहिब ने और धुन रवि की है। चुपकी से दिल में जगह बन गई है, हर खुशी की अब वजह बन गई है, किसी की यादों का असर कुछ ऐसा, हर धड़कन अब सजा बन गई है।

अभी आपने ये लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में दो कलियां फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं नक्श फैलपुरी का लिखा गीत खयाम के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म से। पानी की बूंदों में नाम छुपा है, हर लम्हा एक पैगाम छुपा है। दिल ने जब से किसी को चाहा, हर खामोशी में अरमान छुपा है।

नेपाल में तो मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में नागिन फिल्म का गीत। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। धूप में भी छांव का एहसास हुआ है, दिल को जैसे कोई पास हुआ है। ये मोहब्बत का असर ही तो है, हर दर्द भी खास हुआ है।

तेरी कसम स्वयं का गीत अभी आपने अमित कुमार की आवाज में सुना, स्वीकार किया मैंने। आइए सुनते हैं स्वयं का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, निदा फाजली के बोल की धुन बनाई है उषा खन्ना ने। चांद के साथ हालात भी मुस्कुराई है, सितारों ने भी महफिल सजाई है, दिल ने जब से किसी को चाहा है हर पल में नई रौनक आई है।

शिकार किया मैंने, सुनकर गीत उन्हें अपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुना। और आप सुनते हैं लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज में साहिर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में, धनवान फिल्म से। आंखों की चमक कुछ कहने लगी है, दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, कोई खास दिल में उतर गया है, हर चाहत अब सजने लगी है।

आपने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में धनबाद फिल्म का गीत सुना और आप सुनते हैं साहिर का लिखा गीत। खयाम के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में कभी कभी फिल्म से। निगाहों में बस एक चेहरा रहता है, दिल उसे ख्याल में बहता है, हर रोज एक नई चाहत जगती है और हर एहसास उसी से जुड़ा रहता है।

कभी कभी सुन का गीत भी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुना। रोटी कपड़ा और मकान, आइए सुनते हैं स्वयं को गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद के बोल की धुन बनी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सपनों का रंग गहरा होने लगा है, दिल का रिश्ता सुनहरा होने लगा है, किसी की चाहत ने असर ऐसा किया, हर दिन अब नया सवेरा होने लगा है।

एलओपी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश होटल फिल्म से। आवाज आशा भोसले और मनहर उदास की है, वो इंदिवर के हैं, धुन उषा खन्ना की है। खबरों की दुनिया सजने लगी है, हर घर का नाम बजने लगी है, किसी के नाम की धुन ऐसी जिंदगी भी अब थिरकने लगी है।

अभी आपने आशा भोसले और मनोहर उधास की आवाज में होटल फिल्म का गीत सुना। सफर दिल अब आसान लगता है, हर रास्ता मेहरबान लगता है, किसी की मौजूदगी का असर ऐसा हर मौसम मेहमान लगता है। इसी के साथ फिल्म संगीत अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के महेश शर्मा से बोल रहे हैं। 11 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली के।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही है।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के

0: ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी भाषण का यह चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सुबह यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ खैर, जय हिंद।